0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियायोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रखे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल की बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीयों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो सका है। मंत्रालय ने बताया कि 149 लोग चीन से नेपाल पहुंचे हैं। चीन में लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास इन लोगों के संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के ईरोड में कोंगु विल्लालर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह में

0: शामिल होंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे जहां वो राज्य विधानसभा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालास फारकाश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: वंदन बार।

आज का चिंतन स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। आज का चिंतन, ये थी भक्ति रचनाएं। अब सुनिए देशगान। अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

ये है विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको झरोका के अंतर्गत बता देते हैं आज के दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। छह बजकर 35 मिनट पर श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भाग 295 आप सुनेंगे।

एक बजे सुरीला सफर। दो बजकर 30 मिनट पर सदाबहार नगमे में आप सुनेंगे फिल्मी गीत। तीन बजे मनचाहे गीत संवाद मंजू द्विवेदी, प्रस्तुतकर्ता देशी कामले। तीन बजकर 30 मिनट पर नाट्य तरंग आई लव यू का भाग एक, मूल गुजराई लेखक प्रदीप सोलंकी, हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानडे। और चार बजे आप सुनेंगे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे।

तीन बजे मनचाहे गीत संवाद मंजू द्विवेदी प्रस्तुत करता देशी कामले। तीन बजकर 30 मिनट पर नाट्य तरंग आई लव यू का भाग एक, मूल गुजराई लेखक प्रदीप सोलंकी, हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानडे, और 4 बजे आप सुनेंगे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुत तेश्री कामले। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने,

7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा, रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनो कहानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला का भाग दूसरा, वाचन अमरकांत दुबे, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई। रात 8:15 पर चित्रलोक, रात 9 बजे आपके लिए और रात 10 बजे छाया गीत आलेख एवं स्वर जी श्याम, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी। रात 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे चित्रपट संगीत मैटनी शो का पुनः प्रसारण।

अभी आपने सुना झरोखा के अंतर्गत दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 295।

हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई विभीषण हूं। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरी काया तामसी है। स्वभाव से ही मैं पापी हूं। कानों से आपका सुयश सुनकर आपकी शरण आया हूं। मेरी रक्षा कीजिए। विभीषण ये वचन कहकर श्रीराम के चरणों में दंडवत आ गिरे। हर्षित होकर श्रीराम उन्हें गले से लगा लेते हैं। कहते हैं, हे लंकेश, परिवार सहित अपना कुशल क्षेम सुनाइए। दिन रात दुष्टों के बीच आपका निवास है। आप अपना धर्म भला किस प्रकार निभाते हैं? मैं जानता हूं कि आप नीति कुशल हैं। अनीति से आपका कोई संबंध नहीं। विभीषण निवेदन करते हैं, हे प्रभु, नरक में रहना श्रेयस्कर है, किंतु विधाता किसी को दुष्टों की संगति न दे। लोभ, मोह, मद और अभिमान तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक श्री रघुनाथ का वहां निवास नहीं होता। ये मेरा परम सौभाग्य है, मैंने उन चरणों में शरण प्राप्त कर ली जिनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा तथा शिव करते हैं। श्रीराम ने विभीषण को अपनी भक्त वत्सलता से आश्वस्त कर दिया। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण का जीवन धन्य हो गया।

0: आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: नमस्कार। विविध भारती के खजाने से आज हम चुन लाए हैं सुविख्यात गायक दिनकर गायकिनी से YM माथरे की भेंट वार्ता। ये भेंट वार्ता वर्ष 1986 में संगीत सरिता कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड की गई थी। प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार पंडित जी।
2: जी नमस्कार।
1: आप हमारे देश के एक उच्च कोटि के कलाकार हैं और हमारे शास्त्रीय संगीत के सभी श्रोताओं से बहुत ही परिचित हैं, फिर भी आज प्रथम बार सुनने वाले हमारे कुछ श्रोताओं के लिए हम आपका परिचय कराने हेतु यह जानना चाहेंगे कि आपने कब और कैसे संगीत सीखना शुरू किया और किन गुरुजनों से आपने तालीम पाई है।
2: मैंने संगीत 7 साल की अवस्था
1: जी हाँ
2: में शुरू किया। 1927 का मेरा जन्म ईयर है और 2 अक्टूबर
1: वाह
2: जिसको आप भूल नहीं सकते हैं,
1: गांधी जयंती के
2: जी। और सबसे पहले
1: जी
2: कैरकट्टे नागेश राव
1: अच्छा
2: बम्बई में ही थे, उनसे मैंने प्रारंभ किया। 2 साल सीखे
1: जी।
2: उसके उपरांत पंडित ओंकार नाथ ठाकुर
1: अच्छा बहुत अच्छे,
2: इनसे भी मैंने करीब 1.5 साल
1: जी
2: सीखा
1: जी।
2: उसके बाद मेरे गुरु बंधु श्री चिदानंद नगरकर
1: अच्छा
2: जो कि यहाँ भारतीय विद्या भवन
1: जी
2: के प्रिंसिपल थे, उनका मैंने सबसे पहले जब गाना सुना
1: जी
2: तो मैं प्रभावित हुआ
1: अच्छा।
2: और फिर मैंने ये जिद पकड़ी कि मैं जिनसे उन्होंने तालीम पाई उन्हीं से मैं सीखूंगा। और उन्होंने सीखा था स्वर्गीय पंडित SN रातनजनकर
1: जी हाँ,
2: और वो लखनऊ में थे प्रिंसिपल, तो मुझे लखनऊ जाना पड़ा
1: जी हाँ।
2: और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे माता पिता ने भी आज्ञा दे दी।
1: क्या बात है।
2: और 11 साल की उम्र में मैं लखनऊ गया और वहाँ मैंने फिर विद्या हासिल की
1: जी हाँ।
2: तो

0: इसका मतलब ये है कि आपको बचपन से ही संगीत का शौक रहा है
1: जी।
0: और जैसे आपने रत्नाकर जी से भी तालीम पाई है, रत्नाकर को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की तालीम थी और उस्ताद फयाज खां की तालीम थी, तो आपके गुरु परंपरा से यह हमें ज्ञात होता है कि आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर तीनों घराने की तालीम आपको सीना बसीना प्राप्त हुई है
1: जी।
0: बड़े भाग्यशाली हैं आप।
1: खैर ये तो है ही है, लेकिन वो जमाना अलग था जबकि बहुत कम सुनने के लिए मिलता था गाना उस्तादों का, लेकिन आजकल का जमाना ये है कि रेडियो के जरिए, टेलीविजन के जरिए या म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसके जरिए काफी सुनने के लिए मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि आजकल की जो हमारे नौजवान उनके लिए ये बहुत आसानी हो गई है। इसी तरह से मैं जब सीखता था तो मैं काफी लोगों को सुना करता था उस्तादों को, तो उसमें उस्ताद स्वर्गीय उस्ताद फयाज खां साहब, उनका गाना मुझे बहुत पसंद था, इसलिए उनकी छाप
0: आपके
1: कुछ मेरे गायकी में अधिक मिलती है, ऐसा लोग कहते हैं।
0: नहीं वो सही बात है,
1: हालांकि मैंने उनसे डायरेक्ट तालीम पाई नहीं है, परंतु वो हमारे गुरु जी के, रत्नाकर जी के गुरु थे, तो कुछ न कुछ बातें तो वहां से मिलती हैं, आती हैं। और चूंकि मेरा लगाव रंगीला घराना से था, इसलिए मैंने वो चीजें कुछ हासिल करने की कोशिश की।
0: आपके गायकी से हमारे जो श्रोतागण जो आपको सुनते आ रहे हैं लगातार, उनको ये ज्ञात होता है
1: जी।
0: तो पंडित जी, पिछले आप 40-50 साल से संगीत की सेवा आप कर रहे हैं और आपने मनन चिंतन किया है, तो आपके दृष्टिकोण से हमारे राजदारी संगीत का भविष्य क्या है? मतलब हमारे युवा पीढ़ी के जो कलाकार हैं, क्या वो परंपरा का आदर रखते हुए विद्या का प्रदर्शन करते हैं?
1: देखिए ये बहुत विकट सवाल आपने पूछा है।
0: मतलब मैं भविष्य पूछ रहा हूँ
1: जी, भविष्य की बात अलग है और अभी जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी काफी निर्भर होता है। हमारे जो युवक कलाकार हैं, वो मैं समझता हूँ उनके उम्र में हम जब थे
0: जी,
1: हम यानी मैं और मेरे गुरु बंधु, उनसे ज्यादा मेरे ख्याल से इनका IQ बहुत अधिक
0: है
1: जी, और वो अगर सीखें तरीके से तो मेरे ख्याल से हम लोगों से भी अधिक आगे बढ़ सकते हैं। परंतु आजकल हुआ ये है कि उनको काफी सुनने के लिए मिलता है, अलग अलग घरानों की तालीम वो सुनते हैं
0: जी हाँ,
1: और सीखते दूसरा घराना।
0: अच्छा अच्छा, तो
1: और फिर ये व्यवसाय बनाने के नाते भी कुछ सीखना शुरू करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो जब ये व्यवसाय का जब सवाल आता है, उठता है
0: जी,
1: तब उसमें व्यवसाय में हमारा लाइट म्यूजिक जिसको कहते हैं
0: जी,
1: या उपशास्त्रीय संगीत
0: हाँ,
1: या फिल्मी, वहीं पर आप उनका व्यवसाय जो है वो जुड़ा रहता है, जिससे कि वो आमदनी उनको अधिक मिलती है, तो उनका मन जो है वो बट जाता है और एक ही जगह वो कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाते
0: जी हाँ।
1: इस वजह से वो विद्या हासिल करने के लिए जो एक लगन चाहिए
0: जी हाँ,
1: एक तत्परता चाहिए और एक मेडिटेटिव क्वालिटीज जो माइंड में होनी चाहिए वो बन नहीं पाती है।
0: अच्छा।
1: इस वजह से उनका गाना कुछ हद तक पनपता है और बाद में वो स्टेल हो जाता है, क्यों कि उसमें विद्या जो है उसका अभाव लगता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: और विद्या जब तक नहीं है तब तक अपना आर्ट जो है
0: वो
1: कला
0: उसका,
1: वो पनप नहीं पाती है,
0: उसका विकास नहीं होता।
1: विकास उत्थान वगैरह अगर करना है तो विद्या मतलब सीखना बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है और साथ साथ रियाज भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये तीनों चीजें। और आजकल दिन ऐसे हैं, गुजर रहे हैं कि अगर वो कोई चाहे भी हमको प्रैक्टिस करें
0: जी,
1: तो उस तरह के साधन उनको उपलब्ध नहीं होते। ये सब कठिनाइयां हैं, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद हमारा रागदारी संगीत कुछ दूसरा मोड ले। मेरा कहना यह है कि जब डेढ़ डेढ़ घंटा लोग एक एक राग को बरतते थे और सुनने वाले सुनते भी थे, अब दोनों में फर्क आ गया है। सुनने वाले डेढ़ घंटा सुनना एक राग को पसंद नहीं करते हैं, इसी तरह से गाने वाले जो है या बजाने वाले, वो डेढ़ घंटा तक एक राग को बरतना उनमें वो हाँ उतना धैर्य
0: नहीं है
1: हाँ, ये कहिए। तो मेरे ख्याल से इस दृष्टि से कुछ मोड़ ले लेगा और हो सकता है कि अच्छे अच्छे राग जो है वो 45 मिनट से लेके 50 मिनट तक बड़े अच्छी तरह से निभ सकते हैं और निभा लेंगे, और वैसा तो आजकल नौजवान गाते भी हैं, बजाते भी हैं।
0: और पंडित जी, पाश्चात्य

0: श्रोताओं के मन में हमारे संगीत के प्रति किस प्रकार की भावना है?
1: 5 साल पहले मैं जब गया तो वहाँ हमारा वोकल म्यूजिक जी है ना, गायन कला
0: जी हाँ,
1: वो उतनी रुचिदायक उनको लगती नहीं थी
0: जी हाँ।
1: फिर मैंने अब की बार जब मैं गया तब काफी 6-7 यूनिवर्सिटीज में
0: आपने निरूपणात्मक व्याख्यान दिए हैं।
1: निरूपण मैंने उनको ठीक ढंग से समझाया।
0: अच्छा,
1: इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड, कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड
0: जी हाँ
1: इन इंडियन म्यूजिक
0: जी हाँ,
1: यहाँ से लेकर मैंने प्रेजेंट डे राग संगीत तक
0: जी हाँ
1: मैंने उनको मुख्तसर में सब चीजें बता दी। काफी 3-3 घंटे मेरा कॉन्सर्ट उन्होंने पसंद किया
0: और सुना,
1: ये सुना और पसंद किया। इसका मतलब ये श्रेय मैं मुझको नहीं, मेरे ऊपर नहीं लेता हूँ, परंतु हमारे भारतीय संगीत की कला जो है
0: एक विशाल कला है, मगर आपने बहुत बड़ा कार्य किया है कि जो आपने उनको सही बातें समझा दी उनको
1: जी,
0: हमारे संगीत के बारे में जो सही जानकारी होनी चाहिए, जिस दृष्टि से उसे देखना चाहिए, उस बातें सब आपने बता दी। हमारे श्रोताओं के लिए आपने अपना मूल्यवान समय देकर जो आज यहाँ उपस्थित रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते।
2: सुविख्यात गायक दिनकर गायकिनी से YM म्हात्रे की ये भेंट वार्ता अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं दिनकर कैकिनी का गाया सावन।

विविध भारती के खजाने से। आज आप सुन रहे थे सुविख्यात गायक दिनकर कैकिनी से की गई भेंट वार्ता और तत्पश्चात उनका गाया सावन। इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरेगी इस बात थोड़ी ही देर में।
1: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

लीजिए श्रोताओं, हम हाजिर हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

छोटी बहन, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, सुबीर सैन की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत शबनम फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में, जावेद अनवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कुछ दिल ने कहा
3: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की।
2: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
3: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
2: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
4: हम चले तुम चलो सावन की हवा।
3: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
2: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
3: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
2: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
3: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
4: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
3: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
4: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
3: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गोदान फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं अनजान के बोल रविशंकर की बनाई तर्ज।
1: त्रिपुरा के पतवा सर के डोले मनवा कि हियारा में उठते हिलो, अरे पुरुआ के झोंकवा में

0: अब एक मस्ती भरा गाना भूत बंगला। इस फिल्म से मन्ना डे और साथियों के स्वरों में हंसर जयपुरी की रचना आर डी बर्मन का संगीत।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात। आओ ट्विस्ट करे का उठा मौसम में

उदास रहना चाहते हो?

0: मन्ना डे और साथियों के स्वर में भूत बंगला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है।
1: हल्दी के गुणों से भरा वीको टर्मरिक WSO क्रीम जो आपके चेहरे के कील और मुहासे दूर करे और आपको दे प्राकृतिक सुंदरता,
2: अब सिर्फ 10 रुपए के सैशे पैक में भी।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मशहूरों में जान तो दांतों की शान, यही है वीको की पहचान।

ये है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

लीजिए श्रोताओं, हाजिर हैं हम कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के लेकर। हमजोली फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के स्वरों में, आनंद बख्शी के बोल, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: होश उड़ा जाए, पांव डगमगाए, आया प्यार भरा मौसम दीवाना।
1: अभिनेत्री लीना चंदावरकर का जन्मदिन उन्हें ढेरों शुभकामनाओं के साथ। आप सुन रहे हैं उन्हीं पर फिल्माए गीत, कार्यक्रम है हम है राही प्यार के।

0: महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के स्वरों में अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी की रचना, तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। हम

0: कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
3: भारूड एक ऐसी कला है कंटेम्प्रेरी है वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
4: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती
3: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
4: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक
3: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
4: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
3: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है ये जो दीवारें खड़ी करना है इससे क्या बनने वाला है।
4: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: महल हो सब

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा पेंशन DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल ज्यादा बचत ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
5: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
4: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने

0: पर चर्चा होगी।
1: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
2: भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमरीकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेगी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
2: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308871, 0112308871। आप व्हाट्सएप नंबर 9968291988 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 9779851316807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
5: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है।

0: सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सीएनजी के मूल्य में 3.89 रूपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमत 86.98 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित सीएनजी कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
2: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता एन योव एनजी को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थानी गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है। आईटी शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में दो दिन की गिरावट थमी। शिक्षा की दीवार से आसान हो रही पढ़ाई, सरकारी स्कूल में नवाचार, निजी स्कूलों से हटा सरकारी में कराया प्रवेश। मध्य प्रदेश के सीहोर में इस योजना

0: के माध्यम से अंग्रेजी सीखने के सरल तरीके को अपनाया जा रहा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है।
1: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 579 हुई। 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकस को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

साथियों, आज है राष्ट्रीय खेल दिवस। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेल कूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना?

अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग, नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम, उसके बाद थोड़ा सा खेलकूद, चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुक्का छुपी का खेल। थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चों के साथ बच्चा बनने से, उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा।

मैंने नहीं तो

हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की जरूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर मनचाहे गीत।

0: कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091 मंच है गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091 आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में

लीजिए श्रोताओं, हाजिर हैं हम कार्यक्रम चित्रलोक लेकर, जहां आसमान पर बिखरी सूरज की सुनहरी रोशनी आज के दिन का मूड तय कर रही है और हवाओं में घुली ताजगी कह रही है चलो आज कुछ नया सुनते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वक्त है उन धुनों का जो कानों से होकर सीधे दिल तक पहुंचेगी, उन आवाजों का जिनमें आज के जमाने की चमक है और उन गीतों का जो शायद आज पहली बार सुनकर ही आपकी पसंदीदा प्लेलिस्ट का हिस्सा शायद वो गाने बन जाए। कुछ धुनें कदमों में रफ्तार भरेंगी, कुछ चेहरे पर मुस्कान लाएंगी और कुछ शायद इस खूबसूरत सुबह को आपकी और भी प्यारी खूबसूरत सी सुबह बना दे। तो आवाज थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, अपने मूड को म्यूजिक के हवाले कर दीजिए और तैयार हो जाइए कार्यक्रम चित्रलोक सुनने के लिए। आप सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। मैं हूँ आज आपके साथ पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग।

कार्यक्रम की पहली पेशकश आपने सुनी मेरी ब्रदर की दुल्हन फिल्म से नेहा भसीन की आवाज में। इरशाद कामिल के बोल थे सोहेल सेन का संगीत। अगला गीत हैप्पी न्यू ईयर इस फिल्म से श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में। रचना इरशाद कामिल की ही है, विशाल शेखर का संगीत है।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में कुमार के बोल। शारिब तोशी का संगीत।

0: चक दे इंडिया इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट और साथियों के स्वरों में। जयदीप साहनी के बोल थे, संगीत दिया था सलीम सुलेमान ने।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
3: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
4: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
3: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
5: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
3: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। प्रीतम के संगीत से सजा अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में। फिल्म का नाम है तू झूठी मैं मक्कार।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: कार्यक्रम चित्रलोक में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: जूलियस पैकियम ने इस गीत को संगीत दिया था।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कुछ दिल ने कहा
3: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
2: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
3: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
2: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
4: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
3: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
2: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
3: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
2: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
3: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
4: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
3: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
4: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
3: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे।

श्रोताओं, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आपको बता दें कि आज 29 अगस्त को हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस। अच्छा, क्यों मनाया जाता है ये दिवस? इस दिन का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि दुनिया को परमाणु हथियारों के परीक्षण से होने वाले मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाले खतरों के प्रति जागरूक करना है। परमाणु परीक्षण से रेडिएशन फैल सकता है, जिसका असर लंबे समय तक मनुष्य और प्रकृति पर रह सकता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि परमाणु हथियारों के परीक्षण को रोका जाए, देशों के बीच शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए और ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में प्रयास किए जाए जहां परमाणु परीक्षण और उनसे होने वाले विनाश का खतरा ना हो। तो आइए आज इस दिवस पर हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना और उसके लिए प्रयास करें जहां शक्ति का प्रदर्शन विनाश से नहीं बल्कि शांति, संवाद और मानवता से हो।

0: रश्मि विराग का लिखा गीत आप सुन रहे थे। संगीतबद्ध किया था आरको ने। फिल्म का नाम था सुखी और आवाज थी सचेत टंडन की।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसके प्रायोजक है वीको वज्रदंती। मजेदार नहीं, असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।

चांद सिफारिश, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म फना से। शान और कैलाश खैर की आवाजें थी, प्रसून जोशी का लिखा गीत, जतिन ललित का संगीत। ढिशक्याओं इस फिल्म से आप गीत सुन रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। सनमजीत तलवार ने इस गीत को लिखा है, पलाश मुश्चल की आवाज, माफ कीजिएगा, पलक मुश्चल की द्वारा संगीतबद्ध किया गीत।

अरिजीत सिंह की आवाज में रिश्कियाओं फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस गीत के संगीतकार का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, पलाश मुच्छल ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। तेजस फिल्म से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और शाश्वत सचदेव की आवाजों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: आज बात करें अभिनेत्री लीना चंदावरकर की।
1: क्या तुम सच कह रहे हो? अरे क्या, तुम तो बहुत छोटा ही है।
2: आपको तो ताज्जुब होगा कि इतनी गहरी चोट खाने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ।
1: मुझे गलत मत समझना।
2: यही तो अफसोस है, मैं आपको बिल्कुल सही समझ गया हूँ।
1: मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। सच कहती हूँ, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल नादानी है।
2: कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा।
1: वाह, अच्छा शेर है। बैठो, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ।
2: ड्रेसिंग की क्या जरूरत है? दुनिया का हर जख्म कुछ दिनों बाद भर जाता है, और फिर अपनी जिंदगी तो कांटों में कटी है।
1: मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उस आदमी से सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें देहरादून तक ले जाए और तुम फिर कड़ी नजर रखे। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती
2: कि मैं टूट जाऊंगा।
3: लीना, कि अब भी मैं लेके कहा था, तू कहा थी अब तक?
1: घर पर ही थी और कहा थी।
2: नेंद्रा को मेकअप करने के लिए 2 घंटे चाहिए।
1: मैं मेकअप नहीं कर रही थी, गाड़ी का इंतजार कर रही थी। गाड़ी तुम लेकर आए, मैं कैसे आती?
2: अरे अंकल की गाड़ी ले आती।
1: उनकी गाड़ी में आई, मुझे अकल मत सिखाओ।
2: अकल तो उसे सिखाई जाती है जिसके पास अकल हो।
3: अरे अरे अरे, क्या हो गया तुम लोगों को बाबा? आज मेरा बर्थडे है, उस दिन लड़ोगे?
1: आज मेरी सबसे प्यारी सहेली लीना मेरी बर्थडे पार्टी की खुशी में एक गाना सुनाएगी।
2: हाँ हाँ।

सुनैया चंदावरकर दरअसल कारवाड़ की रहने वाली हैं। 15 साल की उम्र में उन्हें अभिनय का चस्का लग गया और होनहार कलाकारों के चयन के लिए होने वाली एक प्रतियोगिता में उन्होंने चुपके से आवेदन कर दिया। उनके माता पिता ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दादाजी का समर्थन पाकर लीना चली आई मुंबई। उम्र बहुत कम होने के कारण इन दिनों उन्हें हीरोइन के रोल नहीं दिए जाते थे। कुछ फिल्मों में लीना चंदावरकर ने बहन की भूमिकाएं की। इस दौर में लीना ने छुटपुट मॉडलिंग भी की। उन दिनों अभिनेता और निर्देशक सुनील दत्त अपनी फिल्म मन का मीत की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म में उन्होंने लीना को पहली बार हीरोइन बनाया।

फिल्म मन का मीत की तैयारी के दौरान सुनील दत्त ने लीना की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अपनी पत्नी नरगिस को सौंपी। नरगिस जी के नजदीक रहकर लीना ने भाषा, संवाद अदायगी, नृत्य, तैराकी और ड्राइविंग सीखी। फिल्म मन का मीत को बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन लीना चंदावरकर की पहचान जरूर बन गई। अगले ही साल सन 1970 में लीना चंदावरकर की धमाकेदार फिल्म आई हम जोली।

0: जाने दो जाना है गाते गाते लीना धूम मचाती हुई चोटी की हीरोइनों में गिनी जाने लगी। शम्मी कपूर के साथ वे नजर आई फिल्म प्रीतम और फिल्म जाने अनजाने में।
1: राम, आज मैं बहुत खुश हूँ। दिल पे एक बोझा था, वो आज हट गया।
2: बोझ? कैसा बोझ?
1: आज जब तुम्हारा फोन आया था तो हेमंत भी वहाँ मौजूद था। उसने एकदम अचानक शादी की बात छेड़ी।
2: मुबारक हो।
1: ओहो, तुमसे बात करना भी मुश्किल है। मैंने हेमंत से साफ साफ कह दिया कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ।
2: माला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब तुम्हें मालूम होगा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ तो
1: अब कोई फायदा नहीं राम।

0: जब शक्ति सामंत जी आए घर पर और वो जाने अनजाने के लिए आए थे, तो उन्होंने दो फिल्मों के ऑफर लेके आए थे, एक में राजेश जी थे और एक में शम्मी जी। अब पता नहीं मेरे पापा को किसने भड़काया था कि शम्मी जी बहुत ही अपने टाइम में वो क्या बोलते हैं एकदम टाइप के थे, तो पापा ने बोला, पापा भी एकदम उनको मालूम नहीं ना, बोले कि राजेश खन्ना यस, शम्मी कपूर नो। तो उन्होंने वाई क्यों नो, तो बोलते वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, राजेश खन्ना नए नए हैं, तो नहीं आप बोलिए ना, ये शम्मी जी के साथ में बहुत अच्छा रोल है और इतना अच्छा मतलब सब्जेक्ट है। वो जमाना ऐसे था कि कोई आर्टिस्ट ही थे नहीं, इसलिए हम लोगों को वाकई बहुत इज्जत मिली और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस तरह से कि जैसे रवेल साहब मुझे तो अपने एक बेटी की तरह ट्रीट किया और एक मंदिर जैसा लगता था स्टूडियो में जाना का। अब हुआ ये कि शक्ति जी की फिल्म से पहले बप्पी सोनी एक डायरेक्टर थे जिन्होंने प्रीतम के लिए मुझे साइन किया, इन्होंने जाने अनजाने के लिए, तो इसका आउटडोर पहले आया, तो आउटडोर पहले हम लोग कश्मीर चले गए आउटडोर करने के लिए, दो तीन गाने फिल्म आए वगैरह, तो वहां पर शम्मी जी के साथ काफी उनकी फैमिली भी आई हुई थी वहां पर, और मस्ती मजाक भी करते थे, वो मुझे बोलते थे डेढ़ फुटी, मैं बोलती थी लंबे इंसान का दिमाग घुटने में होता है, ऊंचा जो होता है, इस तरह से हम लोग, वो तो राजी नहीं बोला था कि वो डेढ़ फुट ही बोले, तो ऐसे बोलना कि घुटने में होता है आप लोगों का दिमाग, तो हम लोग काफी मतलब फैमिली काफी क्लोज आ गई और वो इतने अच्छे इंसान थे कि मैं
1: अभिनेत्री लीना चंदावरकर की धर्मेंद्र के साथ जोड़ी बनी फिल्म रखवाला में मेरे

सन 1971 में हास्य अभिनेता महमूद की फिल्म आई मैं सुंदर हूँ। इस फिल्म के जरिए लीना ने अपने चाहने वालों से कहा,

ये सन 1973 में आई फिल्म अनहोनी का गीत था। इसके बाद लीना की एक बड़ी शानदार फिल्म आई मनचली।

मंचली में लीना चंदावरकर ने लोगों को अपनी अदाओं से खूब गुदगुदाया और ये साबित कर दिया कि कॉमेडी में भी उनका कोई जवाब नहीं है। सन 1974 में आई फिल्म विदाई, इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए लीना को खूब तारीफ मिली।

सन 1974 में विदाई फिल्म के साथ ही लीना चंदावरकर ने फिल्म उद्योग को अलविदा कह दिया था, क्योंकि सिद्धार्थ वांदोड़कर के साथ उनका विवाह हो गया था। एक दर्दनाक दुर्घटना में उनके पति नहीं रहे और लीना पर

0: खुशी है कभी गम।
1: आगे चलकर लीना चंदावरकर की मुलाकात हुई सुरों के बादशाह किशोर कुमार से, जो उनके जीवन साथी बने।
2: आज भी मैं जब कोई गाना सुनती हूँ उनका, तो एक एक गाने के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। जैसे एक गाना था, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

एक कवि जेने जीवन में घटती हर एक घटना हर एक क्षणना वर्तमाननी लीला ने खूबज सभानता थी माणीने एने पोताना विचारों

0: परेशानी, क्योंकि एक मच्छर इंसान को सोने नहीं देता है। नई टेक्नोलॉजी की मच्छर जाली के लिए संपर्क करें 45 वर्ष से आपकी सेवा में उपस्थित आरके ब्लाइंड्स दांडिया बाजार 9825027525। सेहत आपकी, सुरक्षा हमारी, ये है आरके ब्लाइंड्स की जिम्मेदारी।
1: वडनेरकर ज्वेलर्स वडोदरा सौभाग्यना दागीना तो फक्त वडनेरकर ज्वेलर्स नाज। वडनेरकर ज्वेलर्स ब्रह्मपुरी दांडिया बाजार वडोदरा।
2: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसके प्रायोजक है वीको वज्रदंती। मजेदार नहीं असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: मित्रों आज 29 ऑगस्ट, आज समग्र देश में राष्ट्रीय रमत दिवस की उजवणी थई रही है। मित्रों बाळपण याद आवे एटले सौ प्रथम शू याद आवे, शाळानुं मैदान, दौड़, क्रिकेट, फूटबॉल, खो खो, कबड्डी, क्यारेक जीत, ए जीतनो आनंद तो क्यारेक हारनो दुख, पण एज तो रमत छे। रमत आपणने शीखवे छे कि जीतीए त्यारे विनम्र रहेवू अने हारीए त्यारे निराश न थवू। रमत शरीरने तंदुरस्त बनावे छे, मनने सक्रिय राखे छे अने जीवनमां नियमितता लावे छे। आजना समयमां मोबाइल अने स्क्रीन सामे पसार થતો સમય ખૂબ વધી ગયો છે, તેથી રમતનું મહત્વ પણ ખૂબ જ વધી ગયું છે। દરરોજ થોડો સમય કોઈ શારીરિક પ્રવૃત્તિ માટે આપવો એ સ્વસ્થ જીવન તરફનું એક સારું પગલું છે। પ્રસ્તુત છે દંગલ ફિલ્મનું આ ગીત આમિર ખાનના સ્વરમાં। ગીત લખ્યું છે અમિત ભટ્ટાચાર્યે, સંગીતકાર પ્રીતમ।

0: મિત્રો, આ સાથે જ ફિલ્મ સંગીતનો કાર્યક્રમ સમાપ્ત થાય છે. આપે ટ્યુન કર્યું છે વિવિધ ભારતીનું વડોદરા કેન્દ્ર 93.9 મેગાહર્ટ્ઝ પર. થોડી જ વારમાં સાંભળશો હિન્દીમાં સમાચાર.
1: મેં વિશાલ શર્મા. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की चार दिन की यात्रा पर रवाना हो गए. श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी और इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. उन्होंने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे. श्री मोदी ने कहा कि वे ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे. भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है. पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के

0: बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रूपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रूपये और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों और उससे सटे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटों के ऊपर हवा के ऊपरी स्तर पर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी उड़ीसा तट पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। बालेश्वर, केंदुझर और मयूरभंज जिलों के लिए आज सुबह तक ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीलंका का सामना आज संयुक्त अरब अमीरात से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत का पहला मैच कल थाईलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है कुछ सदाबहार यादगार नायाब नख्मों से। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है हसरत जयपुरी, संगीतकार है शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है शिकार।

साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला यादगार गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: किशोर कुमार की आवाज में सुनिए अगला गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

साथियों आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है रामलाल का, फिल्म का नाम है सहरा।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों आनंद बख्शी का लिखा गीत है, आवाज किशोर कुमार की, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है राजपूत।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। संगीत है रविंद्र जैन का, फिल्म का नाम है राम भरोसे, और इस गीत में आवाजें आप सुनेंगे किशोर कुमार और साथियों की।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम है सफर।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना है आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है राजा और रंग।

यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत है बपी लहरी का, फिल्म का नाम है चलते चलते।

आते रहना। अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं विविध भारती का सुरीला सफर कार्यक्रम। लेकर बढ़ाई अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि विविध भारती के फेसबुक पेज पर हम एक इबारत पोस्ट करते हैं और आपसे पूछते हैं कि इन शब्दों से आप गाने चुने, तो वो इबारत

हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पढ़कर सुना रहे हैं। आज यूं ही पुराने पन्ने पलट रही थी। अचानक एक मुड़ा तुड़ा पत्र उंगलियों के बीच ठहर गया। उसके साथ सूखे गुलाब की कुछ पंखुड़ियां थीं। वक्त ने जिन्हें मुरझा दिया था, मगर उनमें अब भी तुम्हारे प्यार की खुशबू बाकी थी। पत्र खोलते ही जैसे बरसों पुरानी मोहब्बत फिर से सांस लेने लगी। तुम्हारे शब्दों में वो इंतजार था जो कभी मेरी रातों का साथी हुआ करता था। याद आया कि हमने गुनगुनाया था, रात भर आपकी याद आती रही, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, और तुम्हारा इंतजार और मैं खामोशी ओढ़े चांद को निहारती रहती थी। कितना कुछ चाह कर भी हम एक दूसरे को भूल नहीं सके। तुम मेरे हमदर्द, मेरे हमसफर थे, या शायद ये सब वो तेरे प्यार का एक बहाना था। ना समझ मन को कैसे समझाऊं। आज सूखी पंखुड़ियों को हथेली पर रखकर लगा चांद बदल गया, रात गुजर गई, इंतजार भी बीत गया, मगर तुम्हारी यादों के पत्ते सूख कर भी खुशबू नहीं खोए। तो ये है आज की इबारत, और इसी इबारत में छुपे हैं आज के शब्द, और एक एक शब्द में कई कई गाने छुपे हैं। तो आज जरा आपकी परीक्षा कठिन है, देखिए कि कौन से गाने आपको याद आ रहे हैं। आज तो हमने क्या किया है कि विविध भारती के फेसबुक पेज पर आई और आपने जो गाने सुझाए हैं वही गाने हमने ले लिए हैं, और कुछ गाने अपनी ओर से हमने ऐड किए हैं। तो जरा गाने सुझाइए, देखिए हो सकता है आपके और हमारे गाने एक हो जाए। बहरहाल शुरुआत कर रहे हैं प्रोग्राम का, और ये संगम फिल्म का गाना है। सुनिए और देखिए कि इबारत में ये शब्द आया या नहीं, और कौन सा वाला शब्द है। साथ में बूझिए पहेली कि इसमें हीरो हीरोइन कौन है। आसानी से बूझ जाएंगे, दो हीरो हैं, एक हीरोइन है। पत्र कौन लिखता है किसके नाम, जरा ये बताइएगा। किसके नाम पत्र लिखा जाता है, किसकी ओर से, हीरोइन की ओर से पत्र लिखा जाता है, तो किसके लिए लिखती है। संगम फिल्म का गाना ये रहा।

सूरज फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज। हमने पूछा था कि हीरो हीरोइन कौन है और कौन पत्र लिख रहा है। सभी श्रोताओं ने बताया राजेंद्र कुमार लिख रहे हैं वैजयंती माला के नाम, और एक नायक और है राज कपूर। फिल्म संगम, सही आपने बताया, ये संगम फिल्म का गाना था। सूरज फिल्म का गाना आगे आने वाला है, और आप बता सकते हैं कि सूरज फिल्म का कौन सा गाना इबारत से मैच करेगा, उसमें कौन सा शब्द आता है जो इबारत में है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत हमें कितनी पुरानी यादों के नगर में ले गई, खत या चिट्ठी का तो जैसे युग बीत गया। खत कितनी कहानियां, अनकहे किस्से और जज्बात को अपने में समोए हुए होते हैं। मुझे खत लिखना बेहद पसंद था है, और मुझे खत के जवाब में इंतजार में भी मजा आता था। खत किसी का होता था, बुआ का होता था, जब बच्चे बाहर पढ़ते थे तो उनके खत की राह देख रही होती थी, पर वो रोमांच आजकल मैसेज के रिप्लाई आने पर नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया। तो जरा बताइए कि आप में से कौन आज भी पत्र लिखते हैं और किसके लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि गानों की फेहरिस्त लिखिए, पुकार लो, तुम्हारा इंतजार और वो तेरे प्यार का गम, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कैसे समझाऊं, वगैरह वगैरह। बहुत सारे श्रोताओं ने गानों की लिस्ट भेजी है, और सच कहें तो आज हम आपके गानों को ही आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है तेरा खत लेके सनम पांव कहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे श्रोताओं की पसंद एक है आज। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि पुरानी किताबों के कभी पन्ने पलटते समय अनायास ही सूखा गुलाब का फूल नजर आने पर उसे कभी फेंकने का मन नहीं होता, आज भी वैसा ही रखा रहता है और बीते हुए पलों की खूबसूरत तस्वीर को बयां करता है। सूखे गुलाब की पंखुड़ियां मुरझाती नहीं बल्कि महकती हुई आंखों में उतर आती है। ये बताइए हमें कि क्या कभी आपने भी पत्र के साथ गुलाब का फूल भेजा था। अगर भेजा है तो वो लम्हा याद कीजिए और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और हमें गुलाब और कली फूल वाला गाना भी सुझाइए कि कौन कोई ऐसा गाना है जिसमें गुलाब शब्द आता है या कोई फूल के नाम आते हैं, वो भी आप सुझा सकते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सुनिए सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गाना, माफ कीजिएगा सूरज फिल्म का ये गाना, और बताइए कौन है हीरो हीरोइन।

सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में पढ़ाई के समय जब ये गाना सुनता था, फूल तुम्हें भेजा है खत में सुन के भी खत में गुलाब का फूल भेजा था, आज वो दिन आपके द्वारा याद आ गया। एक श्रोता ने लिखा है कि सूरज फिल्म का गाना आपने सरस्वती चंद्र बताया, लेकिन तुरंत आपको हमने बता दिया कि सूरज फिल्म का गाना था, सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना हम आगे सुनवाएंगे। और एक श्रोता ने लिखा है कि नायक सिल्वर जुबली कलाकार राजेंद्र कुमार, और बिल्कुल ये जवाब तो सही था बहुत सारे श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता ने लिखा है कि खत में किसी को फूल तो नहीं भेजी, पर एक तितली फूल केसरिया रंग की आती थी, उसे हम अपनी कॉपी में दबा के रखते थे तो उस फूल का कलर सहित छप जाता था, तो चिट्ठियों में भी हम वैसा ही करते थे। क्या बात है भाई, ये तो अलग तरह की बात हो गई। तो अब बात तितली की चली है, तो ये भी याद कीजिए कि तितली पकड़ने के पीछे कौन लोग हैं जो भागते थे। क्या तितली पकड़ में आती थी? वैसे तितली पकड़ के हाथ में बिठाना ये ठीक नहीं था, लेकिन बचपन का जो समय होता है, सब लोग अपने अपने जमाने में तितली पकड़ने के पीछे भागते थे। पता नहीं क्या उसमें अट्रैक्शन होता है कि पकड़ने की कोशिश की जाती, पकड़ में नहीं आती थी। कितने लोग पकड़ पाए थे जरा बताइएगा हमें। एक श्रोता ने लिखा है कि पापा का दूसरे शहर में स्थानांतरण होने पर हम सखियों को पत्र लिखा करते थे 70 के दशक में। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र शब्द से खत शब्द पर आ गए, इससे गीतों की श्रृंखला भी बदल जाने की उम्मीद है। बिल्कुल, आप गीतों के बोल लिखते रहिए, हम वो गाने चुन चुन कर सुनवाते रहेंगे आप सभी को। एक श्रोता ने लिखा है कि फूल गुलाब का लाखों हजारों में चेहरा तुम्हारा। क्या बात है, हमने पूछा था कि ऐसा गाना बताइए जिसमें गुलाब शब्द आए। और एक श्रोता ने फूल आहिस्ता को फूल बड़े नाजुक होते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत की कुछ पंक्तियां मुकेश जी के गाने की तरफ इशारा कर रही हैं। भाई, एक गायक की ओर कैसे इशारा कर सकती हैं? ये तो इबारत में बहुत सारे शब्द हैं, आप ढूंढेंगे तो अनगिनत गाने आपको याद आएंगे। अगर याद आ रहे हैं तो जरा लिखते चलिएगा, बताते चलिएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, और ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज न होना। एक और आगे उन्होंने लिखा है कि अब डाकिया डाक नहीं लाता, अब सब संदेश मोबाइल पर आते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं इस ईमेल एसएमएस के और व्हाट्सएप के जमाने में भी। तो जरा आप याद कीजिए कि आप क्या आज भी पत्र लिखते हैं? अभी अभी रक्षाबंधन बीता है 28 तारीख को, तो क्या आपने

अपने भाई को पत्र लिखा या बहन को, याद कीजिए और हमें बताइए। अब जरा सुनिए ये गाना और बूझिए हीरो हीरोइन का नाम। अगर हीरो हीरोइन नहीं बता सकते तो गायिका का नाम बूझिए और गायक का नाम भी बूझिए।

पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। फटाफट श्रोताओं ने जवाब दिया, बहुत सही जवाब दिया कि इसमें देव आनंद और नूतन होते हैं, बिल्कुल सही है। और एक श्रोता ने यह भी लिखा कि मेरी लिस्ट का तीसरा गाना बज गया है। और एक श्रोता ने कहा कि अरे वाह, आज तो मेरे सारे गाने चुने हुए आ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। हमें भी बड़ा मजा आ रहा है कि आप ही के लिखे हुए गाने हम सुनवा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि सारे गाने आप इबारत से चुन रहे हैं और हमारी जो प्लेलिस्ट में हम डाल रहे हैं वो हमसे मैच कर रहे हैं। हम जैसे ही सोच रहे हैं कि ये गाना अगर आप सुझाएं तो हम वो बजवाएं, और तब तक आपकी टिप्पणी आ जाती है। लेकिन हमने आपसे कहा कि हमदम शब्द से गाना सुझाइए, अभी तक हमें बहुत सारे गाने नहीं मिले बहुत सारे श्रोताओं की ओर से, इसलिए हमने अपना प्लान चेंज कर दिया। अब जिस शब्द से आपकी ओर से गाने आएंगे हम वो सुनवाते रहेंगे। बहुत सारे श्रोताओं ने खुशबू और देखने पर गाने लिखे हैं, तो खामोशी फिल्म का गाना हमें मिला है, बहुत सारे श्रोताओं की ओर से वही गाना सुनवाएंगे। लेकिन सवाल भी है इसमें, गीतकार संगीत

कलाकार का नाम आपको बूझना है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि वाह भाई, आज तो हमारे गाने सुनवाए जा रहे हैं, भाई क्या बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी छुटकी तो तितलियां पकड़ने में बहुत दक्ष है, तितलियां पकड़कर खिड़की की जाली पर बिठा देती थी, किसी को उड़ाने नहीं देती, फिर स्कूल चली जाती और माँ बाद में उनको बाहर उड़ा देती। एक श्रोता ने लिखा है कि खूबसूरत रंग बिरंगी तितली के पीछे बचपन में बारिश के मौसम में भागते थे पर कभी पकड़ नहीं पाए, आज भी उड़ती तितलियां अच्छी लगती हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं लिखा, हमारी एक श्रोता ने लिखा था। बाकी ये नहीं बताया कि तितली पकड़कर किसी ने ऐसा प्रयोग किया कि कॉपी पर बिठा दी और उसका कलर आ गया, ऐसा किसी ने किया है क्या? हालांकि ये ठीक नहीं है, लेकिन कौन है अपने बचपन को समझा सके जो तितली के पीछे ना भागे। एक श्रोता ने लिखा है कि एक खास बात आपसे शेयर करना चाहूंगी, मेरे 5 साल के पौत्र को एक डायरी में मैं खत लिखती हूँ, उसकी यादगार बातें और हम कैसे उसकी परवरिश करते हैं, उसकी प्यारी निर्दोष बातें वगैरह। मैंने मेरे बेटे को कहा कि जब वो समझदार हो जाए तो उसे ये पढ़ने देना, और फोटो तो मोबाइल में मिल जाएगी। बहरहाल अच्छी बात है ये तो। आप में से कौन लोग हैं जो अपने बच्चे की नटखट बातों को अपनी डायरी में लिखते हैं, संजोते हैं, अपने बच्चे नाती पोते के बारे में लिखा करते हैं? बहुत अच्छी बात है, लिखिए और हमें बताइए। फिलहाल खामोशी फिल्म का गाना आपको पूछना है, गीतकार और संगीतकार का नाम। हमदम शब्द से गाना सुझाइए, वही गाना हम सुनवाएंगे।

आसान पहेलियां तो बहुत लोग पूछ लेते हैं, हो सकता है ये पहेली भी कुछ लोगों के लिए बड़ी आसान हो। एक श्रोता ने कई श्रोताओं ने हमदम शब्द से कई गाने सुझाए हैं, लेकिन हमें और भी इंतजार है, कुछ और गाने सुझाइए जो हमारे गाने से मैच कर जाए, तब हम सुनवाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत इन पन्नों के लिए कहें, उन सूखे हुए फूल और समाहित एक एक पलों की वो यादें ताज़ा हो रही हैं जो हम लिखा करते थे बचपन में। एक श्रोता ने लिखा है कि खत में और अपनी किताब में बहुत बार गुलाब का फूल रखा, क्योंकि हमें फूल बहुत पसंद है, पर क्यों ऐसा होता है कि जो चीज़ बहुत पसंद है वही नहीं मिलती। बहुत बार अब देखो ना, हमारे घर गुलाब उतने अच्छे से लग नहीं पाते, बहुत बार लगाया, कभी गुड़हल में इतने फूल रोज खिलते हैं पर वो भी कई रंग के। कहा जाता है कि गुलाब बहुत मुश्किल से लगता है और लगता है तो जल्दी से मुरझा जाता है। गुलाब की परवरिश के लिए आप कहीं खोजबीन कर लीजिए, किसी जानकार से पूछ लीजिए, माली से पूछ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में पीले रंग की तितली पकड़कर किताब में रख दिया करते थे, उसका रंग कॉपी पर आ जाता था, लेकिन आज उस बात का दुख होता है। बिल्कुल, अगर तितली पकड़कर उसकी जान ले लेते हैं तो कितनी दुखद बात है ना, वो तितली का भी एक पूरा परिवार होता होगा। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सुनवाते हैं ये गाना। क्या आपने ये गाना सुनने के लिए सोचा था जो हम सुनवाने जा रहे हैं, बताइए। गीतकार और संगीतकार का नाम, खामोशी फिल्म का दूसरा गाना जो हमारे इबारत में जो शब्द है वो भी बूझिए।

हमने आपसे गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था, राजेंद्र कृष्ण और कल्याण जी आनंद जी। श्रोताओं ने जवाब सही दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। फिल्म थी ब्लैकमेल। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बड़ी बहन जब 10 से 11 साल की थी तब हम लोग बासंता गांव में थे और मेरा और संगीतकार जयकिशन जी का जन्म स्थान, तब वहां तितलियां बहुत आती थी, उन्हें पकड़ती भी थी और बाद में कुछ सेकंड्स के बाद छोड़ देती थी। ये अच्छी बात है, पकड़ा तो उसे छोड़ भी दिया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत इन पन्नों से जुड़ी हुई है और बहुत सारे श्रोता इबारत से जुड़ी हुई अपनी बात लिख रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था हमदम शब्द से कौन सा गाना याद आ रहा है, भाई अनेक अनगिनत गाने लोगों ने सुझाए, मेरे सनम फिल्म का गाना सुझाया है श्रोताओं ने और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में यादें ताजा कर दी आपने, प्रेम पत्र जो इतना संभाल कर रखा था दशकों बाद मिला, पुराना प्रेम फिर जागृत हो गया जो समय की परत में पीछे छूट गया, जिसमें सूखा गुलाब अपनी खुशबू समेटे दबा था। जो गाने चुने हैं वो है रात भर आपकी याद आती रही, मेरी सांसों को जो महका रही, कैसे समझाऊं भाई। ये सारे गाने हम भी सोच रहे हैं लेकिन अब क्या करें, समय तो एक घंटे का है, इसमें कौन कौन से गाने शामिल करें। अब हमदम शब्द से जो गाने हमारे श्रोताओं ने चुने हैं उनमें से एक लिया।

हमने खामोशी फिल्म का गाना एक सुनवाया था और पूछा था कि उसमें कौन सा एक गाना और है जो हमारे इबारत में वो शब्द शामिल है। सभी श्रोताओं ने लिख डाला, तुम्हारा इंतजार पुकार लो, तुम्हारा इंतजार, बिल्कुल सही लिखा है। और एक नहीं कई श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और ये जो गाना अभी हमने आपको सुनवाया, फिर वही दिल आया हूँ फिल्म का नाम था। हालांकि हमदम शब्द से बहुत सारे गाने आए हमारे श्रोताओं की ओर से, इसमें हीरो हीरोइन जॉय मुखर्जी और आशा पारिक, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र गुलाब तितलियों शानदार इबारत पर आज सुरीला सफर, शानदार प्रस्तुति और शानदार आपकी टिप्पणियां हमें प्रभावित कर रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कंक्रीट के इन जंगलों में ढूंढती हैं वो बाग बगीचे, उड़ती हैं मासूम तितलियां काले धुएं शोर के नीचे, मशीनी इस दौर में भी वो पंखों में रंग सजाती हैं, खो न जाए प्रकृति का सौंदर्य, बस यही याद दिलाती है। सुनिए अब अगला गाना फिल्म गमन से, आपको बूझना है किसकी है आवाज और कौन है गीतकार। आपको गायिका का नाम बताना है और गीतकार का नाम बताना है। फिल्म गमन।

इस गाने से जुड़ी हुई पहेली आपको पूछना है गायिका का नाम, गीतकार का नाम और अगला गाना कौन सा होना चाहिए, जरा उस गाने के बोल लिखिए फटाफट ताकि हम वही गाना सुनवा सके जो आप सुनना चाहते हैं।

गमन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था गायिका का नाम और गीतकार का नाम। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है, गायिका का नाम भी और गीतकार का नाम भी। छाया गांगुली की आवाज थी, गमन फिल्म का नाम था और गीतकार मखदूम मोहिउद्दीन, संगीतकार जयदेव थे। एक श्रोता ने लिखा है कि हम आज बहुत व्यस्त हैं उसके बावजूद आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज तो हमारे सारे गाने इस प्रोग्राम में शामिल हो गए, लेकिन प्रोग्राम का आखिरी गाना हमने आपसे पूछा था, अभी तक तो कोई टिप्पणी नहीं आई। बहरहाल हमें लगता है कुछ श्रोताओं ने जो पहले लिखा था, इस गाने का जिक्र किया था, वो गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए और जरा बूझिए फिल्म का नाम क्या है।

पगला कहीं का फिल्म का नाम था और ये हमारा सवाल था, सभी श्रोताओं ने सही पूछा और लता मंगेशकर की आवाज थी। अक्सर आप मोहम्मद रफी की आवाज वाला वर्जन सुनते हैं। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की धुन थी और हमने प्रोग्राम का आखिरी गाना आपसे पूछा था। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आपकी पसंद हमारी पसंद और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज तो हमारा वाला गाना बज गया बहुत सारा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। सुरीला सफर का ये सुरीला सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

साथियों, आज है राष्ट्रीय खेल दिवस। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेलकूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना?

अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग, नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम, उसके बाद थोड़ा सा खेलकूद, चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुका छुपी का खेल। थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चों के साथ बच्चा बनने से, उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा।

खेल हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की जरूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई, 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार, लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज़्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। जी सुशील, ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं वहां पर और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप?
1: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज़्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज़्बेकिस्तान

0: बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना है और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
1: सुशील, इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वहां पर?
0: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विशाल,
1: बहुत धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्चस्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। इसमें विनिर्माण, AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर शामिल हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 011-230-88-719 और 011-230-12113। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल है situationroom@mea.gov.in। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर है +977-9851-31-6807 +977-970-910-7500 और +979810326117। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है +8618514284905। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। वेनेजुएला के साथ हुए इस समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण हासिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता अमेरिका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमेरिका के कुल तेल भंडार दोगुने से भी अधिक हो जाए।

0: आएंगे। अमरीकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमरीकी राजनयिक दबाव प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए अमरीकी सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है, जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाकर उन्हें अमरीका को सौंप दिया गया था। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर अत्यधिक सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। एक रिपोर्ट।
2: श्री पेजश्कियान ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु जून में हुए शांति समझौते को फिर से लागू करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता लागू रहने के दौरान ईरान ने करीब 9 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था। श्री पेजश्कियान की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। अमरीका और ईरान ने 18 जून को क्षेत्र में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति का समझौता किया था, जिसकी समय सीमा 17 अगस्त को समाप्त हो गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम समझौते तक पहुंचना था, लेकिन पिछले महीने तनाव बढ़ने के बाद इनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 31 अगस्त से सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है गुट निरपेक्षता की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रूपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रूपये और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
4: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
5: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा।
4: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है।

0: सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहले देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को उनके समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश और गरज के साथ तूफान जारी रहने की संभावना है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे जबकि बारिश नहीं होगी। विभाग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: संगीतकार थे मदन मोहन, फिल्म का नाम था सुहागन।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की

0: प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: राजा मेहंदी अली खां का लिखा गीत सुनिए महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। तर्ज है मदन मोहन की, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए अब सुना जाए नीरज का लिखा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। धुन है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नखमे। तो अब अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। नगमा निगार है हसरत जयपुरी, संगीतकार है शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

साथियों, कार्यक्रम सदाबहार नगमे की अगली और अंतिम पेशकश है लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मन चाहे गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज फिल्म 14वीं का चांद।

14वीं का चांद फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल थे, रवि का संगीत था और इस गाने को सुनने के लिए पत्र लिखा आप सभी श्रोताओं ने। मानेवाड़ा रोड से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता, मनोहर और लक्ष्मण की ओर से फरमाइश आई। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी डोंगर दिवे रमा ताई, डोंगर दिवे राहुल, सीमा ताई, रीमा ताई, इन्होंने पत्र भेजा नागपुर महाराष्ट्र से। और हमें पत्र मिला है सम्राट चौक शिरपुर जैन से गिरीश देशमुख, अश्विनी और मौसमी की ओर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

दूर गगन की छाव में इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। संगीत भी किशोर कुमार का था और इस गाने को सुनने के लिए पत्र लिखा मीना तलरेजा ने और इन्होंने पूरी चिट्ठी भी लिखी और भी बातें लिखी है कि बेटियों के साथ ये प्रोग्राम सुना करती हैं। और भी हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने फरमाइश भेजी है, उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं। जिला बीर शहर से रणजीत कुमार नामदेव थोरात, रितेश आकाश, रश्मि रंजना और गबरू और इनके मित्रगण। दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार। और हमारे कुछ श्रोताओं ने और भी पत्र लिखा है। गेवराई शुगर फैक्ट्री महाराष्ट्र से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की ओर से।

ढूंढो ढूंढो रे साजना मुरे कान का बाला, और हम लगातार ढूंढ रहे हैं आपकी फरमाइशी पत्र, और लगातार कुछ कुछ नए नाम हमें मिलते जा रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे नियमित श्रोताओं के नाम भी शामिल हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से फरमाइश आई इस गाने के लिए, उनके नाम मैं पहले पढ़कर सुना दूं आपको। मछली गोदाम रायगढ़ से ये पत्र मिला है इसी गाने की, इसके अलावा भी कुछ गाने इन्होंने लिखे हैं। भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, प्रियंका, लीलू और इनके अन्य मित्रगण। बरगी नगर जबलपुर से चिट्ठी आई है रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश और इनका पूरा परिवार। नरोत्तम गौड़ ने फरमाइश भेजी है लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से, और ये जो पत्र है मेरे हाथ में, ये पत्र आया है लक्ष्मीपुरा चौपड़ा के सामने सागर मध्य प्रदेश से। बहुत सारे नाम लिखे, केसर बाई, हेमंत, योगेश और निजा, सुनीता, विनीता, अभय, अभिषेक, आयुष और इनका पूरा परिवार। और कुछ फरमाइशें और आई हैं। ये फरमाइशी पत्र आया है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश और इनके मित्रगण। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। और दोस्तों, हम पत्र वो शामिल करते हैं जिसमें बहुत सारे पत्रों में एक ही फिल्म के गाने लिखे होते हैं, लेकिन कई बार हम आपके फरमाइशी पत्र शामिल कर लेते हैं और एक कोई पत्र उठाते हैं जिससे आपको गाना सुनवाते हैं, मतलब एक पत्र में एक फिल्म का नाम लिखा है वो गाना हम आप तक पहुंचाते हैं, बाकी कुछ फरमाइशी पत्र भी शामिल करते हैं। तो अब चलिए सुनते हैं ये।

कन्यादान फिल्म का गाना था और मोहम्मद रफी की आवाज थी। जो सुनने के लिए पत्र हमें मिले वो ये हैं, अकोला से शिवराज भारती, कुमारी टीना भारती, तनीषा, वेणु संगेकर, रीना, रोहित और इनके मित्रगण। फरमाइश आई अन्य श्रोताओं के भी, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केशव, जत्तो रानी और इनके साथी महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे, मिलिंद सरकटे ने फरमाइश भेजी वरुण जौलका से। और इसी गाने की फरमाइश आई थी अनिल वचकामले, सुषमा वचकामले सभी और इनके अन्य मित्रगण। श्रोताओं आपसे अनुरोध है कि कृपया जब आप फरमाइश भेजते हैं तो साफ साफ नाम लिखें ताकि आपके नाम सही सही पढ़े जा सके। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत।

मुबारक बेगम की आवाज थी, दत्ताराम का संगीत था, फिल्म थी मोरे मन में तो। फरमाइशी पत्र आए घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके अन्य साथी, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई डोंगर दिवे, रीमाताई और इनका पूरा परिवार, कृष्णनगर टीवी टावर से। और हमारे ये श्रोता है छाया बंछोर, प्रीति, चंद्रकिरण, पोषण बंछोर और इनका पूरा परिवार, छत्तीसगढ़ पाहरा जिला दुर्ग से। कटारिया कच्छ से पत्र आया है मानतिक राघाणी, डॉक्टर निषाद राघाणी, कबीर, रमजान और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश मिली है।

जीने की राह फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और फरमाइश भेजी थी इस गाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने। सीवन हरियाणा से सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा और इनके अन्य साथी, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुल्ढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार, गांव चलाला काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, इकबाल महबूब और इनके अन्य साथी। चलिए अब सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गीत ये।

0: बॉबी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसे पसंद किया था इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और इनके मित्रगण ने। जवाहर गज जबलपुर से फरमाइश आई थी जिनेन्द्र जैन, महेंद्र और इनके साथियों की ओर से। और फरमाइश आई थी दिलीप कुमार सेंचुरी, विमला रानी, शिम्पी, सुरेश, अमित और इनके साथियों की ओर से। आदर्श रेडियो श्रोता संघ कन्हैया बाजार पूर्णिया से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: यह है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक आई लव यू पहला भाग। मूल गुजराती लेखक हैं प्रदीप सोलंकी, हिंदी नाट्य रेडियो रूपांतरकार सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानड़े। तो आइए सुनते हैं नाटक आई लव यू पहला भाग।
2: इधर भी नहीं, यहाँ भी नहीं।
3: क्यों जी, ये क्या ढूंढ रहे हो?
2: मेरा सिर।
3: वो क्या तुम्हें सोफे के नीचे मिलेगा?
2: तुम अपनी रसोई देखो, मुझे मेरा काम करने दो।
3: अरे, देखो जरा, देखो तो।
2: क्या देखूं? क्या देखूं? तुम में देखने लायक है ही क्या?
3: अरे मैं कह रही हूँ, तुमने कमीज उल्टी पहन रखी है।
2: तो क्या मेरी कमीज, मैं चाहे जैसा पहनूं।
3: अरे लेकिन किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा?
2: क्या देख लिया तू? हैं हैं,
3: ये तुम्हारी कमीज और क्या?
2: मुझे छोड़कर लोग मेरी कमीज क्यों देखेंगे?
3: क्योंकि तुमने ये उल्टी पहनी है।
2: अरे पहनी है ये क्या काम है, तुम्हें पता है कई लोग तो यूं ही घर में घूमते रहते हैं। मिल गया। ये देखो ये अखबार। चलो अब घंटे भर तक मुझसे बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है, समझी?
3: ये कोई समय है अखबार पढ़ने का? सुबह से क्या कर रहे थे? हाँ क्या कर रहे थे?
2: हाँ, और तुम जब मुझे 3 दिन की बासी रोटी खिलाती हो तब। चलो चलो अपनी राह लो, रसोई में जाओ।
3: मेरी समझ में नहीं आता आखिर अखबार में ऐसा क्या पढ़ने लायक होता है? हाँ
2: तुम क्या समझोगी, अखबार पढ़ने से अकल बढ़ती है अकल।
3: हाँ इसीलिए तो कम अकल वाले ही पढ़ा करते हैं।
2: तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कम अकल वाला पति कैसे पसंद कर लिया?
3: अच्छी पैकिंग देखकर माल खरीदने से कई बार लोग धोखा भी खा जाते हैं।
2: देखो मैं कहता हूँ तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो।
3: रावण सामने खड़ा हो तो सीता को लक्ष्मण रेखा पार करनी ही पड़ती है।
2: क्या कहा तुमने? तुमने मुझे रावण कहा?
3: नहीं नहीं, मैं तो अपने को सीता कह रही थी। इन साहब को बैठे बैठे अखबार पढ़ने की सोच रही थी। अखबार पढ़ेंगे, बताओ बैठ कर अखबार।
2: बाप रे बाप, कमाल की खबर छपी है। एक महिला ने दो सिर वाले बच्चे को जन्म दिया। अरे भाई रेखा, रेखा भाई सुनती हो?
3: अरे क्या है क्या है?
2: ये देखो पढ़ो, देखो क्या लिखा है इसके अंदर।
3: अरे मुझे फुर्सत नहीं है।
2: फुर्सत नहीं क्यों? रसोई में तुम क्या धो रही थी?
3: आज रामू नहीं आया, जानते हैं रामू नहीं आया। बर्तन कौन साफ करेगा, तुम्हारा चाचा?
2: क्या कहा तुमने?
3: मैंने कहा बर्तन कौन, तुम्हारा चाचा साफ करेगा।
2: चाचा मर गए।

0: अच्छा अच्छा अच्छा अब ये राजा भाई टावर की तरह खड़े खड़े क्या देख रही हो, ये सब सामान वगैरह उठाओ ठीक करो। चाचा जी चाचा जी,
1: ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है, क्यों इस तरह से गला फाड़ रहे हो?
0: अरे अरे अरे, आज जगजीवन चाचा और रमा चाची हमारे यहाँ आ रहे हैं ना।
1: क्या
0: अब ये सांसें क्या भर रही हो, कल रात मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे सुबह याद दिला देना?
1: अरे वो रामू नहीं आया ना, तो मैं इसी परेशानी में मैं तो भूल ही गई।
0: भूल गई खाना खाना? नहीं भूली, अरे रामू का तो बहाना है बहाना।
1: अब करना क्या है वो बोलो।
0: अरे उनके जैसे करोड़पति चाचा खुद चलकर अपने घर आ रहे हैं और तुमने अभी तक बर्तन भी साफ नहीं किए।
1: चाचा जी तुम्हें मिलने आ रहे हैं या हमारे बर्तनों से? और अगर चाचा जी आ भी रही हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई?
0: तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो?
1: जी गलती हो गई बस।
0: गलती तो मेरी है कि मैंने तुमसे शादी की।
1: तो गलती सुधार लो।
0: गवाही झूठी हो तो सुधारी भी जा सकती है, लेकिन ये तो न जाने किस मुसीबत से पाला पड़ा।
1: बस बस रहने दो आप, और बस बहुत हो गया, अब और समय बर्बाद मत करो, जल्दी से सब साफ सफाई कर लो। हाँ बस।
0: साफ सफाई? साफ सफाई कौन करे, मैं करूँ?
1: तो क्या हुआ, भगवान ने तुम्हें हाथ नहीं दिए?
0: तो क्या तुम मेरे हाथ में झाड़ू थमा दोगी?
1: तो नहीं क्या लड्डू लगा दूँ?
0: इतनी खूबसूरत उम्मीद तुमसे करना बेकार है।
1: क्या इसी तरह लड़ाई झगड़े में ही वक्त बर्बाद करने का इरादा है तुम्हारा? हा?
0: अरे इतना तो सोचो कि आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। पति?
1: पति नहीं वनस्पति हो। अभी यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, कभी इधर बैठे तो कभी उधर बैठे, कभी इधर कभी उधर।
0: सीधे एक सुन लो, कह देता हूँ मैं साफ सफाई नहीं करने वाला, नहीं करने वाला।
1: तो मत करो, चाचा तुम्हारे आ रही है मेरे नहीं।
0: हाँ, और जब तुम्हारी चाची आई थी तो मैं नहीं गया था श्रीखंड लेने के लिए?
1: चाची बेचारी तो सीधी अफ्रीका से आ रही थी।
0: ये बताने की जरूरत नहीं, वो तो उसकी शक्ल से ही मालूम पड़ गया था।
1: और तुम श्रीखंड लेने इसलिए गए थे क्योंकि तुम्हारे लिए चाची पैंट का कपड़ा लेकर आई थी।
0: जी, और वो पैंट धोते ही सिकुड़ कर हाफ पैंट हो गई थी। ना ना करते भी तुम्हारी चाची कितना सारा खाना खा गई थी। मेरी चप्पल कहाँ है?
1: कहाँ जा रहे हो?
0: चाचा जी के लिए थोड़ा गुलाब जामुन और रसमलाई लेकर आता हूँ, उन्हें घाट ऊपर की मिठाई बहुत पसंद है। चलो ये तुम्हारी चप्पल।
1: अरे अरे मेरी चप्पल उतारो, उतारो मेरी चप्पल, कोई जरूरत नहीं मेरी चप्पल पहनने की। अरे करोड़पति होंगे तो अपने घर के, इन पैसे वालों को कभी किसी की कदर नहीं होती। हाँ जब ये लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हम कितनी भाग दौड़ करके इन्हें लेने जाते हैं, और जब हम इनके घर जाते हैं तो ये लोग मुंह बनाते हैं, हम इनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाते हैं, और ये लोग हमें क्या खिलाते हैं मालूम है? आलू की सब्जी और रोटी, जैसे हम कोई भिखारी हैं।
0: अब रहने दो रहने दो, मेरे चाचा जी ऐसे नहीं है।
1: तुम्हारे ही नहीं, दुनिया के सारे करोड़पति चाचा एक ही जैसे होते हैं।
0: तुम मुझे चप्पल लाकर देती हो या नहीं?
1: चप्पल टूट गई है।
0: टूट गई? किसने तोड़ी?
1: अरे तुम्हारी चप्पल तुम्हारे अलावा इस घर में और किसके पाँव में आएगी?
0: अच्छा भाई, टूटी हुई सही, मगर वो है कहाँ?
1: होगी कहीं पड़ी हुई, ढूंढ लो। तुम्हारी चप्पल कोई राम जी की चरण पादुका तो है नहीं क्योंकि पूजा के लिए ले जाएगा।
0: ओफो, अरे भाई चप्पल तो मिल ही नहीं रही है। चलो जाने दो जाने दो, मेरे बूट कहाँ है? बूट लाओ। मैं कहता हूँ मेरे बूट कहाँ है?
1: अरे वो उधर घोड़े के नीचे पड़े हैं, वो देखो उधर।
0: घोड़े के नीचे मेरे बूट किस गधे ने रख दिए?
1: कल रात तुम्ही ने वहाँ उतारे थे।
0: अरे इसके फीते कहाँ गए भाई?
1: ओहो अब मुझे क्या मालूम,
0: कल तो थे ना।
1: चूहा ले गया होगा।
0: चूहा? तो क्या रात को हमारे यहाँ चूहा आया था?
1: क्यों, तुम्हारे चाचा आ सकते हैं तो चूहा क्यों नहीं आ सकता? तुम्हारे चाचा करोड़पति हैं तो तुम्हें क्यों इतना खुश हुए जा रहे हो तुम? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
0: तुमने मुझे दीवाना कहा है?
1: अरे मैंने तो सिर्फ कहावत कही है भाई।
0: लेकिन इशारा तो मेरी ही तरफ था ना, मेरे चाचा जी के आने से तुम्हारे सिर में क्यों दर्द हो रहा है?
1: हाँ चाचा, कल मामा, परसों मौसा, दरवाजे पर बोर्ड लगा दो मनोहर लाल की धर्मशाला।
0: मैं कहता हूँ चुप बैठो नहीं तो। अरे भाई इस बूट का फीता कहाँ गया?
1: जाओ बाजार से खरीद ला, जाओ।
0: बाजार कैसे जाऊं, बूट में फीता नहीं है, चप्पल टूटी हुई है।
1: नंगे पाँव जाओ।

0: लेकिन रामू नहीं है। इस तरह से मेहमानों की भीड़ लगती रही तो काम के लिए नौकर टिकेगा कैसे, बोलो।
1: नौकरों के न टिकने का कारण मेहमान नहीं बल्कि तुम्हारी ये पकपक है।
0: अच्छा, तो क्या मैं बकबक करती रहती हूँ?
1: इसके लिए किसी इंक्वायरी कमेटी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये बात तो सूरज की रोशनी की तरह साफ है।
0: अरे शादी के पहले तो कहते थे रेखा तुम बोलती हो तो तुम्हारे मुंह से फूल चढ़ते हैं।
1: हाँ हाँ, तब मैं खुद फूल था, एक बेवकूफ था, एक गधा था।
0: अभी भी कहाँ सुधरे हो?
1: शादी से पहले तो मैं तुम्हें मेनका समझता था, मेनका। अब मालूम पड़ा कि तुम ताड़का हो, ताड़का।
0: तुम्हें मिठाई लेने जाना है?
1: तुम जा। अंदर जाकर पहले फीता ढूंढो, नहीं तो कम से कम वो टूटी हुई चप्पल ले आओ। वो भी चलेगी, जब आधे दिमाग वाली पत्नी चल गई तो टूटी हुई चप्पल क्यों नहीं चलेगी। मर गया, चाचा जी आ गए। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाकर दरवाजा खोलो।
0: देखो मेरे कपड़े तो ठीक है ना?
1: घर में इतनी सारी अच्छी अच्छी साड़ियां पड़ी हैं और तुमने ये कहाँ की फटी पुरानी पहन रखी है। वैसे तो बिना मतलब घर में बनारसी सिल्क पहना करती हो और जब कोई मेहमान आने वाला है तभी तुम्हें ये चिथड़े पहनने की जरूरत पड़ती है।
0: अरे अरे दरवाजा खोलो, नहीं तो तुम्हारे चाचा पीछे के रास्ते से आ जाएंगे।
1: मैं जा रहा हूँ।
2: मौसी मौसी मौसी कहाँ हो तुम? मौसी
1: अरे भाई मैं हूँ, मैं हूँ।
2: मौसी जी आप? थैंक गॉड, मुझे लगा कोई मोहाली पीछे पड़ा है।
1: भाई ये तो बताओ ये इस तरह हाथ क्यों रही हो?
2: महोदय जी आपके पास रेलवे का टाइम टेबल है क्या?
1: वो क्यों?
2: कोई अच्छी सी ट्रेन देखकर उसके नीचे मुझे अपनी जान देनी है।
1: कोई फायदा नहीं, आजकल गाड़ियाँ टाइम टेबल के हिसाब से चलती कहाँ है।
2: मौसी कहाँ है?
1: अरे मगर क्या बात है, मुझे बताओ तो सही।
2: आपसे क्या कहूँ, आप भी तो आखिर एक मर्द ही है ना।
1: अभी तो तुम्हारी शादी तय हुई है और इतनी जल्दी तुमने इतना तजुर्बा भी कर लिया।
2: मौसी का है बताइए ना।
1: वो तो भगवान को प्यारी हो गई।
2: मौसा जी ये आप क्या अनाप शनाप पक रहे हैं, अभी सुबह ही तो मैंने उससे बात की थी।
1: ओ हो हो हो, तुम अपनी मौसी की बात कर रही हो, मैं समझा मेरी मौसी।
2: लुक मौसा जी, आई डोंट लाइक सच नॉनसेंस जोक।
1: Then you should not marry because marriage is a biggest joke.
2: Please, मौसा जी, मुझे जरा शांति से बैठने दीजिए।
1: घर में झगड़ा कर आई हो?
2: मैं घर से नहीं आ रही हूँ।
1: तो बाहर किसी से झगड़ा किया होगा?
2: मैं क्या सबके साथ झगड़ा करती रहती हूँ, आपको मैं ऐसी लगती हूँ?
1: देखो भाई, इंसान का चेहरा पढ़ना बहुत ही मुश्किल है बेटा। इंसान जैसा होता है वैसा दिखता नहीं और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं।
2: enough. बहुत सुन लिया आपका मैंने।
1: देखो बेटे ये घर मेरा है।
2: घर मेरी मौसी का है।
1: और तुम्हारी मौसी मेरी है।
2: ऐसा आप समझते हैं?
1: क्या मतलब?
2: आप मर्द लोग पत्नी को अपनी जायदाद समझते हैं, अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं, अपने सुख चैन के लिए रखी गई तासी समझते हैं। लेकिन याद रखिए, अब जमाना बदल गया है, टाइम हैज चेंज।
1: ये सारी बातें अपने होने वाले पति वीरेंद्र को सुनाना, मुझे नहीं समझ में आया।
2: नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने। मैं किसी बंदर से शादी कर लूंगी लेकिन उसके साथ कभी नहीं।
1: क्यों बेचारे बंदर की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो?
2: मौसा जी,
1: तो तुम वीरेंद्र से शादी नहीं करना चाहती?
2: नहीं।
1: लेकिन कल तक तो तुम लोग साथ साथ घूमते थे फिरते थे।
2: कल जो किया वो आज भी करना जरूरी है क्या?
1: अरे मगर शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं।
2: हाँ लेकिन ये बात ये मर्द कहाँ समझते हैं, इन्हें क्या।
1: लेकिन तुमने अपने डैडी से बात की?
2: शादी मुझे करनी है मेरी डैडी को।
1: मैं समझता हूँ तुम्हारे डैडी एक ही गलती दोबारा नहीं करेंगे।
2: आप मुझे पता ये मौसी भर गई है क्या?
1: नहीं, साड़ी बदल रही है, बाथरूम में होगी।
2: तो इतनी देर से मुझे बताया क्यों नहीं?
1: लेकिन तुम्हें मौसी से क्या काम है?
2: मैं मौसी से यही कहने आई हूँ कि मेरे मम्मी डैडी को समझाइए।
1: किसके बारे में?
2: मैं अपनी मंगनी तोड़ना चाहती हूँ।
1: क्यों, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो?
2: प्यार? माय फुट, नो, आई कांट लव एनीबॉडी।
1: लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या?
2: अत्याचार, नारियों पर अत्याचार। तुम मर्द लोग अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, क्या अब भी तुम औरतों को अपनी गुलामी समझते हो? कहने को तो रसोई की रानी और असल में ही समझते हो ना, सभी मर्द।

0: अहंकारी होते, ये मुझे मालूम था, लेकिन इतने मीन होते ये आज ही मालूम पड़ा। परशुराम ने जिस तरह क्षत्रियों का संहार किया था, मेरा बच चले तो मैं सारी पुरुष जाति का संहार कर दूं। हिटलर ने जिस तरह यहूदियों को पैरों तले कुचल डाला था, राम ने जिस तरह राक्षसों का नाश किया था, बस उसी तरह।
1: भाई जल्दी आओ, मेरी जान खतरे में है।
2: अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, इस तरह क्यों दहाड़ रहे हो? तुम्हारे चाचा गुजर गए। लीना तुम क्या हुआ?
1: अरे इस लीना पर माता जी आई है।
2: लेकिन तुम क्यों शोर मचा रहे हो?
1: इस पर पिताजी आए हैं।
2: तुम कब आई लीना?
0: अभी थोड़ी देर पहले।
2: मुझे बुलाने में तुम्हें तकलीफ हो रही थी? बैठो ना लीना, बैठो। देखो ये साड़ी कैसी लग रही है।
0: ओहो मौसी, फॉरगेट साड़ी, आई एम वेरी सीरियस।
2: क्यों, क्या हुआ? अरे हाँ, आज तो तुम वीरेंद्र के साथ बाहर जाने वाली थी ना।
0: वीरेंद्र, वीरेन, वीरेन, वीरेन, वीरेन।
2: क्या हुआ, क्या हुआ, उसकी तबीयत तो ठीक है ना?
0: उससे क्या हुआ है? अरे वो तो घोड़े जैसा है।
2: लीना ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारा होने वाला पति है।
0: पति? गधा है गधा।
1: मालूम होता है लाज खाकर आई है।
2: तुम बीच में ना बोलो जी।
1: चाचा जी आ रहे हैं, मालूम है ना। अरे लीना ठीक है, ये मैं तुम्हारी चप्पल पहन के चला जाता हूँ।
2: अरे ये क्या पागलपन है,
1: थोड़ी छोटी होती है बस।
0: लेकिन मेरी चप्पल से आपको क्या काम?
1: गुलाब जामुन, रस मलाई
0: मुझे नहीं खानी।
2: इनके चाचा जी पधार रहे हैं। अरे पहले उन्हें आने तो दो। तुम क्या लेडीज चप्पल पहनकर जाने वाले थे?
1: तो क्या हो गया भाई, तुम लोग भी तो हमारी पैंट पहनती हो, शर्ट पहनती हो, घड़ी पहनती हो, तो क्या हम तुम्हारी चप्पल भी नहीं पहन सकते? ओहो अब की बार तो चाचा जी हैं।
2: ओहो चाचा जी आ रहे हैं तो ऐसे क्या उतावली हुए जा रहे हो? वो कोई तुम्हारे लिए बंगला बांध कर देने के लिए नहीं आ रहे, समझे?
1: लीना, लीना जरा समझाओ इसे। अरे चाचा जी हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ काम की वजह से आए हुए हैं बंबई, और अहमदाबाद में उनकी चार चार मिले हैं। चार चार
2: दो मिले बंद हो गई हैं और दो में हड़ताल चल रही है।
1: अरे तुम्हारे चाचा के पास तो बंद पड़ी हुई घड़ी भी नहीं है। जानती हो लीना, मेरे चाचा जी 2 साल पहले अहमदाबाद के मेयर थे।
2: तभी से अहमदाबाद में पानी आना बंद हो गया है।
1: चुप करो रेखा, मैं कहता हूँ चुप करो। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे घर आ रही है
2: तो कोई नई बात नहीं है। लोक लाज के लिए भी रिश्तेदारों के घर जाना पड़ता है। बड़े मिल वाले बनते हैं। एक पैजामे का कपड़ा भी कभी मिला है आज तक हमें?
0: अरे अरे कोई दरवाजा तो खोलो। अच्छा तो मैं ही खोल देती हूँ।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, तुम रहने दो लीना। देखो तुम ऐसा करो, अंदर के कमरे में जाकर बैठो, कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल गई है तो। जाओ ना।
2: बिल्कुल नहीं, इधर बैठो। तुम्हारे चाचा बड़े हैं तो क्या मेरी भांजी ऐसी वैसी है?
0: ये हुई ना बात, तुम्हारा खून खून है और हमारा क्या पानी है।
1: ओ, तुम लोग अपनी बकबक बंद करो, चुपचाप बैठी हो। मैं खोल देता हूँ। अरे वीरेंद्र तुम?
3: ओह थैंक गॉड, लीना तुम यहाँ हो।
0: तुम क्या समझे मैं ट्रेन के नीचे जाकर खुदकुशी कर लूंगी? आई एम नॉट दैट कावर्ड।
3: प्लीज प्लीज लीना, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, आखिर सोचा तुम यही होगी।
0: तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए? मेरी जासूसी कर रहे हो? शर्म नहीं आती? बेशरम
2: लीना, तुम होश में तो हो? ये क्या बोल रही हो?
0: गेट आउट, आई से गेट आउट।
3: लीना प्लीज बिहेव योरसेल्फ, यहाँ कोई और भी है, इसका तो ख्याल करो।
0: ये लोग कोई पराया नहीं है, मेरे मौसा और मौसी है।
1: चलो ये वीरेंद्र के जूते ही डाले लेता हूँ।
2: ये तो क्या कर रहे हो?
1: ये बूट, बूट, बूट।
3: ये बूट तो मेरे हैं।
1: मुझे मालूम है, यूं ही जरा ट्राई कर रहा था।
2: कुछ ट्राई वाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ बैठ जाओ चुपचाप। देखते नहीं घर में मेहमान आई है।
3: व्हाट आर यू टॉकिंग मौसी, मैं तो घर का ही आदमी हूँ।
0: अब तुम्हारा इस घर से कोई संबंध नहीं, ये लोग मेरे मौसा मौसी है।
3: तो मैं कौन सा ना कह रहा हूँ?
0: ना करोगे तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी।
2: लीना वीरेंद्र बैठो ना, क्या बात है यूं अचानक तुम दोनों? यूं
3: बात बात कुछ नहीं मौसी, थोड़ी देर पहले हम बाग में घूमने गए थे। डार्लिंग ये आज अचानक तुम्हारा बाग में घूमने का मन कैसे हुआ?
4: बस यू ही, जस्ट फॉर द चेंज। जिंदगी में मुझे हमेशा कुछ ना कुछ चेंज चाहिए।
3: अच्छा, शादी के बाद तो ऐसा कुछ नहीं चाहोगी ना?

0: ए, हाँ? चुप क्यों हो?
1: सारा दिन क्या बोलती ही रहो?
0: सारे दिन मत बोलो, मगर अभी तो बोलो।
1: क्या बोलो?
0: कुछ भी, तुम बोलती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: ये क्या कर रहे हो? अरे पापा, हम बाग में बैठे।
0: तो क्या हुआ, हमारी शादी होने वाली है।
1: माय डियर, अभी तक लर्निंग लाइसेंस ही है, पक्का लाइसेंस अभी तक मिला नहीं।
2: आए ले लो बाबू, मैं लाया हूँ चने मजेदार, चना जोर गरम। बाबूजी चना लीजिएगा?
0: नो।
2: एकदम अच्छा है बाबूजी, गरमा गरम है।
0: अरे कह दिया ना, नहीं चाहिए।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, गुस्सा काय को करते हो? लो मैं
0: इसीलिए मैं यहाँ आने से मना कर रहा था, देखो यहीं बैठ गया।
1: जाने दो, बैठने दो उसे, उसमें अपने बाप का क्या जाता है?
0: अरे बाप का कुछ नहीं जाता, मेरा जाता है। मैं किसी और की हाजिरी में रोमांस नहीं कर सकता।
1: जब भी हम अकेले में मिले तो क्या रोमांस करना जरूरी है?
0: अरे यही दिन है रोमांस करने के लिए ना, बाद में तो घर गृहस्थी के चक्कर में इस तरह फंस जाएंगे कि बस मत पूछो। ए चने वाले,
2: हाँ?
0: तुम जरा उस तरफ बैठो ना।
2: हाँ क्यों?
0: क्योंकि ये लो 10 का नोट।
2: ए, कितने का दूं बाबूजी?
0: अरे कितने का भी नहीं, तुम वहाँ बैठो जाकर।
2: वहाँ बैठने का 10 रुपया?
0: हाँ हाँ।
2: बहुत अच्छा साहब, ये तो बहुत अच्छा धंधा है, मैं दूसरे को बेचता हूँ।
0: नॉनसेंस। चलो किसी होटल में चलते हैं।
1: प्लीज यही बैठो ना, मुझे यही अच्छा लगता है।
0: ऑल राइट, एज यू विश।
3: माफ कीजिएगा, आपको जरा डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
0: क्या है?
3: कुछ नहीं, कुछ ना होने की वजह ही मुझे यहाँ खींच लाई है।
0: ए भाई, आप क्या चाहते हैं?
3: देखो भाई, मैं समझता हूँ आप लोगों की शादी नहीं हुई है।
1: ये आपने कैसे समझ लिया?
3: जिस तरह से आप लोग प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये देखकर।
0: मगर आप हैं कौन?
3: मैं एक लेखक हूँ, नाटक लिखता हूँ।
0: भूखे हो, पैसा चाहिए, लो।
3: मेरे युवा मित्र, मैं भूखा हूँ किंतु भावना का, पैसे का नहीं। तुम एक महीने में जितना नहीं करते उतना खर्च मैं एक दिन में करता हूँ, लेकिन बात करने की जगह नहीं।
1: आप क्या चाहते हैं?
3: लिखते लिखते मैं एक स्थान पर अटक गया हूँ।
0: स्याही खत्म हो गई?
3: नहीं, मेरी समझ खत्म हो गई।
1: इंटरेस्टिंग, आप बैठिए ना।
3: मेरे नाटक का हीरो अमर कवि है, कलाकार है, बड़ा भावुक आदमी है। बिजली के तार पर बैठने की आदत हो जाने वाले पक्षी को जिस तरह वृक्ष की डाल पर बैठना पसंद नहीं, उसी तरह अमर को जीवन में सुखी होना पसंद नहीं। वह दुख को मानता है, सुख को सहन करता है।
0: हाँ, जैसे इस तरह हम सहन कर रहे हैं।
3: आपके रंग में भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किन मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं आ गया।
1: आप जरा भी संकोच न करें वीरेंद्र, इफ यू डोंट
0: माइंड। डार्लिंग, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है।
3: मैं आगे बढ़ूं?
1: ओह श्योर।
3: यू सी, अमर के पास सब कुछ है, लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। वह बड़े शर्मीले किस्म का है, उसकी किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर हो गई है। नए वातावरण में वो अटपटा सा महसूस करता है, कुछ बुझा सा जाता है, उसकी सृजन शक्ति कुंठित सी हो जाती है। अचानक नए गांव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, सुनीता,
0: और वो उसे प्यार करने लगता है, यही ना?
3: नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि अमर और लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का है, और उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे अपना सुख देकर उसका दुख खरीद सके।
1: सुनीता बहुत खूबसूरत थी।
3: देखने में नहीं, लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। अमर सुनीता से मिलता है तो उसे महसूस होता है उसकी बरसों की खोज आज पूरी हो गई, युगों की प्यास आज बुझ गई। वह सुनीता के सानिध्य में रहकर एक अमर काव्य की रचना करना चाहता है।
1: फिर?
3: लेकिन अचानक सुनीता अमर से बोलना छोड़ देती है।
1: पर क्यों?
3: बस इसी का कारण मैं दे नहीं पा रहा हूँ।
1: एक आइडिया, बस आप यू दिखा दीजिए कि अमर सुनीता से कुछ नामुमकिन मांग करता है और सुनीता गुस्से से उसके साथ बोलना बंद कर देती है।
3: नहीं, अमर का करेक्टर ऐसा नहीं है।
0: तो फिर सुनीता अमर से कुछ बड़ी रकम की मांग करती है और अमर के ना देने पर वो रूठ जाती है।
3: दोस्त, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं।
1: तो सुनीता के अहम को धक्का लगे ऐसा कुछ अमर ने किया होगा?
3: एग्जैक्टली, लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा, यही तो मेरी पहेली है।
0: सॉरी, मुझे

0: कुछ सुझाई नहीं देता।
1: अरे किसी को भी कुछ सुझाई नहीं देता, मैंने कितनों से पूछा।
0: अरे कुछ भी वजह बता के नाटक पूरा कर डालिए ना।
1: ऐसा नहीं किया जा सकता।
0: क्यों?
1: क्योंकि अमर सुनीता के बगैर जी नहीं सकता।
0: अब ये तो आपके हाथ में है ना, आप नाटक में थोड़ा अदल बदल कर दीजिए।
1: नाटक होता तो जरूर कर देता।
2: मतलब ये नाटक नहीं है?
1: नहीं, अमर आत्महत्या करने की सोच रहा है।
2: आत्महत्या?
1: हाँ, आज ही।
0: आज ही से क्या मतलब? वो तो आप लिखेंगे तभी ना करेगा।
1: लिखूंगा तभी नहीं, करूंगा तभी।
2: यानी कि?
1: यानी कि मैं ही अमर हूँ।
0: अरे अरे सुनिए तो, अरे कहाँ जा रहे हैं आप?
2: अरे कहाँ गया? माय गॉड, कमाल का आदमी था ना।
0: मुझे तो कोई पागल लगता है, सभी लेखक थोड़े बहुत पागल होते ही हैं। जाने दो, सारा मूड बिगाड़ दिया इसने।
2: लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन दोनों के बीच दरार पड़ गई?
0: ओफो, स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है।
2: रियली?
0: हाँ, अगर दोनों ना समझ हो तो।
2: मान लो हम दोनों के बीच कभी ऐसा हो गया तो?
0: हो ही नहीं सकता, हम दोनों इतने नादान थोड़ी हैं। तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी समझदारी पर तो मुझे नाज है। That's why I love you, darling. तुम भी कहो ना I love you. अरे कहो ना। अरे कहो ना, तुम भी मुझे चाहती हो।
2: अरे इसमें क्या बोलना?
0: एक बार, बस एक बार कह दो ना I love you, मुझे तुमसे प्यार है।
2: मुझे इस तरह का छिजलापन पसंद नहीं। We are not teenagers, we are matured.
0: Okay, okay. ये तो जस्ट मेरे मन की शांति के लिए।
2: Please, मुझे इस तरह बोलना नहीं पसंद।
0: अरे भले ही ना पसंद हो, लेकिन क्या मेरी खातिर तुम नहीं बोलोगी?
2: अरे लेकिन शादी के पहले सब बोलने में क्या रखा है?
0: अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ?
2: बेकार की जिद मत करो।
0: मतलब तुम नहीं बोलोगी?
2: नहीं।
0: मैंने कहा इसलिए नहीं बोल रही हो या तुम्हें पसंद नहीं इसलिए नहीं बोलना चाहती?
2: मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलने वाली।
0: ऑल राइट, लेट्स कॉम्प्रोमाइज। मुझसे नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, बात बात में कहती जाओ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा एक काम करो, इस पेड़ से कहो।
2: वीरेन लगता है तुम पागल हो गए हो।
0: हाँ, तुम्हारे प्यार में।
2: चलो अब हम चलते हैं।
0: तो क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी?
2: मुझे इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं पसंद।
0: अरे मगर इसमें दादागिरी की क्या बात है?
2: सिर्फ दादागिरी ही नहीं, जबरदस्ती है जबरदस्ती। तुम मुझे अपनी गुलाम समझते हो? I hate you.
0: लीना मेरी बात तो सुनो। अरे उसके बाद रास्ते में तो ये जो मुंह में आया वो कहने लगी। मैं कुछ कहूं इससे पहले ही टैक्सी में बैठकर निकल गई। टैक्सी में बैठकर मुझसे पता है क्या कहा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमारे संबंध खत्म। उस हरामखोर लेखक ने सारी आग लगाई है।
2: लेखक को नहीं, अपने आप को गाली दो।
0: तुम ही कहो ना मौसी, आई लव यू कहने में इसका क्या जाता है?
2: जब देखो तब लव लव लव, मत करो, मैं नहीं बोलने वाली।
3: लीना लीना ये झूठी जिद है।
2: आप तो उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि आप भी मर्द है ना।
0: ओहो, इसमें मर्द औरत के संबंध की बात कहाँ से आ गई? अरे ये तो आपस में रिलेशन की बात है।
2: रिलेशन की नहीं, तुम्हारे बेकार की मांग की।
0: देखो लीना, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती।
2: मगर इतना याद रखो कि एक हाथ से तमाचा जरूर पड़ सकता है।
0: तुम लड़ाई झगड़े की भाषा बात मत करो, जरा शराफत सीखो।
2: मैं ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाली। अगर शादी से पहले तुम अपनी मनमानी करवाना चाहते हो तो मुझे भूल जाओ।
0: अरे लीना लीना, हेलो, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो?
4: दोनों पागल हैं।
3: तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं।
4: तुम्हारे रिश्तेदार अब तक कैसे नहीं आए?
3: फोन करके देखूं चाचा जी जहाँ उतरने वाले हैं। हाँ, वो नंबर है तुम्हारे पास?
4: मेरे पास कहाँ से होगा।
3: अब कहाँ जा रही हो भाई?
4: देखो तो सही, ये लोग क्या कर रहे हैं।
3: अरे उनके रूम का दरवाजा बंद करके चली आओ, थोड़ी देर में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
4: क्या तुम भी? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
5: आप सुन रहे थे नाटक आई लव यू का भाग पहला, जिसके मूल लेखक थे प्रवीण सोलंकी। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था सुनंदा नाइक ने। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस तरह से है। मनोहर अजय कश्मीरी, रेखा कामिनी कौशल, लीना भारती कानड़े, वीरेंद्र भूपेंद्र सिंह, जगमोहन राजदीप, रमा लक्ष्मी शर्मा और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे। निर्माण सहयोग मेधा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थीं तनुजा कांगड़े। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती
0: जुलवा में

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: ये थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: बॉम्बे टॉकीज,
3: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।
4: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत।
5: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास आवाज विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। बिना नाम बताए आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके गाने से प्रोग्राम को शुरू करते हैं ताकि लोगों को पता चले आज विविध भारती में कौन आया है।

0: क्या बात है, अब तो सभी लोग जान गए होंगे कि दीपाली विविध भारती के स्टूडियो में आई हैं। दीपाली साहब, बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
0: ये बताइए कि कैसा लग रहा है विविध भारती के इस स्टूडियो में आकर?
1: एकदम सच बताए, मेरे जीवन में अगर संगीत एक तो नेचुरल गिफ्ट है जो कि भगवान की देन है, आवाज, वो आवाज
0: जी,
1: जो कि आदमी या बच्चा लेके पैदा होता है, और फिर आपको बाहर के जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो बनाते हैं। आप विश्वास करेंगे, आई एम श्योर करेंगे, जब हम छोटे थे तो हम जहां जिस परिवेश में पैदा हुए वहां रेडियो बहुत चलता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे जीवन का पहला 10 साल विविध भारती ही रहा है जिसने हमको गाना सिखाया है सर।
0: और एक घटना ऐसी है कि जब आप गा रही थी तो माने समझा रेडियो बज रहा है।
1: हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ रेडियो ही बजता था हर वक्त। एज अ चाइल्ड आई वॉज एक्सपोज टू रेडियो। रेडियो क्योंकि टीवी हर घर में तब नहीं होता था, और होता भी था तो यू नो, अब जॉइंट फैमिली है, 30 लोगों का परिवार है, तो टीवी दादाजी के कमरे में है जहाँ पे सारे लोग जुटते थे टीवी देखने। और वो महाभारत का टाइम चलता था उस समय, लोग महाभारत देखते थे बैठ के, वो हमको याद है। बट टीवी पे और कुछ एक्सेस नहीं था हमारे पास, पर रेडियो एक ऐसी चीज थी। और आपकी इतनी खूबसूरत आवाज है, उस समय भी इतनी खूबसूरत आवाज से आवाजें आती थी अंदर से कि आप सुन रहे हैं विविध भारती और ये है चित्रपट संगीत।
0: क्या बात है।
1: मेरे लिए मेरा एक्सपोजर म्यूजिक के साथ अगर हुआ है तो उसमें विविध भारती, अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है, टू नो व्हाट इंडियन फिल्म म्यूजिक इज ऑल अबाउट।
0: कितनी सुंदर बात आपने कही दीपाली। वो घटना याद कीजिए जब माँ ने समझा रेडियो बज रहा है, पर गा रही थी दीपाली, और वो भी एक प्रार्थना गा रही थी।
1: जी, आपको पता है जब हमको तो ऑनेस्टली याद नहीं है, पर मेरी याददाश्त वैसे अच्छी बहुत है, हमको बहुत कुछ याद रहता है। बट वो हमको वो इंसिडेंट याद है जब हम घर से घर आए थे स्कूल में से।

0: गाया गया था गाना, और घर आए थे और हाथ जोड़ के आंख बंद करके, है मालिक तेरे बंदे हम, तब भी ऐसे ही पर एक 3 साल की बच्ची के अंदर से ऐसी आवाज, और आवाज तो मीठी प्यारी सी थी बचपन में ही, तो माँ सो गई थी काम करते करते, उसको लगा कि रेडियो ऑन छूट गया है, तो वो हमको वो मंजर याद है। ये शायद मेरी माँ को भी विश्वास नहीं होगा कि जब वो पलट के हमको देखी थी, क्योंकि उसके पीछे बैठ के हम कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे, और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है, और वो पलट के हमको देखी, उसके बाद का हमको कुछ भी नहीं याद है, क्योंकि अपेरेंटली मेरी माँ ऐसा कहती है कि वो कूद के बिस्तर से उठी और हमको गोद में उठा के बहुत रोने लगी, वो याद नहीं है हमको। बट आई रिमेम्बर मी रिहर्सिंग दैट सॉन्ग, क्योंकि अगले दिन स्कूल में बोला गया था कि अच्छे से याद करके आना, हम लोग सुनेंगे। तो मेरी माँ को पता चला कि अच्छा, ये तो मेरे पेट से जो निकली है इसको म्यूजिक मिला है, वरदान में मिला है। क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी पुलिस वाले, मेरे दादाजी पुलिस वाले, हमारे यहाँ मेरी जैसी लड़की इज मोर फोकस्ड कि हमको बाइक चलाना आ जाए और गाड़ी ड्राइव करना आ जाए। ये मेरी लाइफ का आई एम वेरी, हमको IPS ऑफिसर बनना था, बट हमको एक गिफ्ट ये मिला था जो मेरी माँ को पागल कर चुका था, ये आवाज। तो मेरी माँ को लेकिन नहीं पता था कि म्यूजिक कैसे सिखाएं, क्या करें। स्कूल से बातें आने लगी, डायरी में रिमार्क्स आने लगे कि आप अपने बच्चे को म्यूजिक सिखाइए। वहां से मेरी माँ का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरे पापा मम्मी दोनों को रेडियो सुनना बहुत पसंद था, तो वो तो हमारे साथ चल ही रहा था, बट उनको भी नहीं पता था कि वो रेडियो जब चल रहा था तो उनकी खुद की बच्ची क्या सुन के क्या पकड़ रही थी। सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट वे।
1: रेडियो एक अंतरधारा की तरह चल रहा था जीवन में, चारों तरफ पुलिस वाले लोग थे
0: जी।
1: और बाइक वाइक चलाना भी सीख लिया था?
0: जी बिल्कुल, आई थिंक हम 6th क्लास में थे तभी हम बाइक चलाने लगे थे।
1: 6th क्लास में?
0: 6th क्लास
1: पैर वैर पहुंच रहे थे?
0: नहीं पहुंचते थे, तो एक दिन चुरा के भागे। वो उस समय साइड स्टैंड पे बाइक लगाना पता चल गया था कि ये मतलब मेन स्टैंड पे अगर किसी ने नहीं लगाया है तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि वो बाइक लेके तो दीपाली भागेगी
1: भाग जाएगी
0: चाबी चुरा के,
1: एक्सीडेंट का डर नहीं।
0: हाँ तो डर तो बड़े होने के बाद आता है ना, बचपन में तो कहाँ पता है आपको। अब जब हम बाइक लेके निकल गए और फील्ड में घुमाने लगे गोल गोल, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
1: अरे भगवान,
0: रोके कैसे, चलाना तो आता है, रोके कैसे।
1: हाँ।
0: फिर हंगामा होने लगा, पड़ोसी चिल्लाने लगे, अरे ये छोटी बच्ची किसकी है, क्योंकि वो सरकारी एरिया था, सारे क्वार्टर्स थे और बीच में बड़ा सा मैदान था, वहां पे बाइक घुमा रहे थे। मेरे चाचा आए चिल्लाते हुए, बना किए थे इसको बाइक लेके जाने के लिए, ये इसको आप क्यों नहीं समझाती हैं। बेचारे वो रोकते रोकते बाइक भी उनके ऊपर गिरा, हम भी गिरे। तो ऐसा था मेरा बचपन में, हम 6th में, हमको बचपन में सपने आते थे कि हम गाड़ी ड्राइव करने लगे। पता नहीं क्यों था मेरे,
1: गाड़ी मतलब
0: 4-व्हीलर
1: प्रॉपर वो लाल बत्ती वाली?
0: नहीं मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फीमेल ड्राइविंग अ कार, जैसे बचपन में हम लोग जब फिल्में देखते थे, वो एक आजादी का, वो हमको नहीं पता कि मेरे अंदर इतना ज्यादा क्यों था, इतना ज्यादा उसकी इच्छा इतनी ज्यादा क्यों थी, ये हम नहीं जानते। मे बी आई वॉज, जैसे कुछ लोग जन्म से ही एक लेवल तक वो शायद पिछला कुछ लेके पहुंचे हुए होते हैं, उनको और आगे बढ़ने की जल्दी बहुत होती है, चाहे वो एक्सपोजर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कोई फीलिंग हो। आप एक छोटा बच्चा जो महसूस कर सकता है जब उसको प्रेम होगा 12, 13, 14 की उम्र में, हमको ऐसा लगता है हमको ये सब चीजें थोड़ी जल्दी एहसास होने लगी थी, कुछ एक्सपीरियंसेस हमको जल्दी महसूस होने लगे थे। तो हम थोड़े जल्दी में रहते थे बचपन में, हर चीज पा लेने के, समझ लेने के, सीख लेने के, जीत जाने के।
1: क्या बात है। इस घटना के बाद फिर बाइक से नाता बना रहा या?
0: बना रहा, और बहुत फिर देवी की कृपा से हम लंबे भी हो गए धीरे धीरे,
1: तो पैर पहुंचने लगे।
0: क्योंकि फिर तब साइकिल्स मिल गया, स्कूल जाने के लिए परमिशन मिल गया कि अब तुम साइकिल से स्कूल जा सकती हो, तुम 6th स्टैंडर्ड में आ गई हो। उनको ये भी लगा होगा कि इसको साइकिल में फंसाओ, नहीं तो ये आए दिन किसी दिन बाइक लेके उलट जाएगी कहीं पर। तो भाई 6th से लेके 8th-9th तक, मतलब 12th तक हम साइकिल से ही स्कूल कॉलेज गए, लेकिन तब तक लंबाई भी हो चुकी थी। और 16 की उम्र में पापा प्रॉमिस किए थे कि तुम 10th का एग्जाम दे दोगे तब गाड़ी चलाना, क्योंकि हम 8th से ही चिल्लाना शुरू कर दिए थे गाड़ी सिखा दो। बट 10th के एग्जाम के बाद फिर गाड़ी चलाना सीख लिए। उसके बाद क्योंकि मेरे पिताजी सिर्फ पुलिस वाले नहीं है, काफी ईमानदार टाइप के पुलिस वाले हैं, तो हम उनको बोलते भी थे कि किसको पता चलेगा मेरा लाइसेंस बना है कि नहीं बना है, आ गया तो चलाने दो, लेकिन बिकॉज और वो डरते भी थे कि अगर वो पकड़े गए तो ज्यादा उनके ऊपर बदनामी

0: आएगी कि ये पुलिस वाला होके अपनी बच्ची को गलत सिखा रहा है। तो इसलिए हमको 18 तक का वेट करना पड़ा गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन तब तक मुंबई आ चुके थे हम रियलिटी शो की वजह से, और फिर पापा ने यहीं पे गाड़ी खरीद दी।
1: क्या बात है। मुझे ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई का क्या चल रहा था और पढ़ाई लिखाई में किस तरह का मामला था?
0: हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, जेन्युइनली बहुत अच्छे थे। मेरा अप्रोच बहुत बचपन में ही, क्योंकि बिहार में पैदा होने का एक फायदा ये होता है दैट आपकी पढ़ाई पे आपका ध्यान रहेगा ही,
1: एजुकेशन पे फोकस
0: है। और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मतलब हम इसको बहुत सिर्फ पॉजिटिवली नहीं देखते हैं। आई थिंक दैट यू नो ये जो आयाम है बहुत सारे, इसका एक्सेस नहीं था हमारे पास, इसलिए एजुकेशन पे फोकस था। अगर किसी एक छोटे बच्चे को ये पता चल जाए कि इफ शी इज गुड एट म्यूजिक या स्पोर्ट्स, और उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मिल रहा है जो उसकी तैयारी के लिए चाहिए, या उसके माँ बाप को पता चल जाए कि ये यहाँ पे है, स्कोप है, तो पढ़ाई का इतना जोर नहीं होगा बिहार में। बिहार में प्रॉब्लम ये था कि कुछ उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं जिस पे हम लोग रिलाई कर सके कि हाँ चलो इसमें बढ़ जाओ तुम, तो पढ़ाई ही इकलौता था। अभी काफी चीजें चेंज हो गई हैं। तो हम पढ़ने में अच्छे थे, और हमको बचपन से ये, मेरे दादाजी, मेरा रॉब बहुत था, बहुत लीडर टाइप के थे हम, तो मेरे दादाजी को लगता था कि ये जरूर आईपीएस ऑफिसर बनेगी। तो ये बोलते बोलते बच्चा कैसे सुनते सुनते उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ हाँ हमको तो आईपीएस आईएएस मिलेगा तो भी आईपीएस लेंगे। ये लोगों के बोलने से दिमाग में बैठ गया था कि हमको तो वर्दी ही पहनना है, एंड आई मेंट फॉर दैट। और हमको ऐसा लगता भी है कि अगर ये मेरा लाइफ टर्न नहीं लेता तो हम शायद बहुत खूंखार आईपीएस ऑफिसर होते अगर तो
1: क्या बात है। अच्छा, संगीत की तालीम का क्या चल रहा था?
0: तो म्यूजिक के जो पटना में टीचिंग का जो पद्धति है, म्यूजिक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल, वो इतना गहरा नहीं है जितना जैसे सदर्न इंडिया में जो बात है ना, जो वो उनके घर घर में वो कल्चर में, या इवन फॉर दैट मैटर बंगाल में, जबकि हम निकले बंगाल से ही है, बट समहाउ बिहार के अंदर टीचिंग, म्यूजिक टीचिंग का इतना जोर नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली कल्चरली भी कितने लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे एज अ टीचर, जब पता है कि स्टूडेंट्स बहुत नहीं मिलने वाले आपको, योग्य स्टूडेंट्स जो उसमें फ्यूचर देख सके। तो मेरे टीचर्स काफी बदलते रहे थ्रू आउट, बचपन से लेकर के मुंबई आने तक। एक टीचर मिले जो कुछ समय के लिए लास्ट तक टिके, बट आई वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स, क्योंकि कभी, क्योंकि ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब आपको ज्ञान नहीं होता है तो ऐसा लगता है ये तो कुछ सिखा ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन आपकी खुद की कमी है, माँ बाप को नहीं पता है म्यूजिक क्या होता है, तो किसी तरह से आई थिंक। और तब ना पटना में बहुत मेरे स्कूल से रिप्रेजेंटेशन होता था मेरा, हम जहां भी जाते थे हर जगह भेजा जाता था, सब जगह से प्राइज लेके आते थे। पटना वुमेन्स कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई, मेरा इंटरमीडिएट जो है 11th 12th वो पटना वुमेन्स कॉलेज से हुआ।
1: बहुत ही रेप्यूटेड,
0: बहुत बहुत बड़ा रेप्यूटेशन है उस कॉलेज का, बहुत इज्जत है, मान है। मतलब हमको बताया कि मेरी माँ के जमाने में जिस लड़की का बायोडेटा में आ जाता था कि वो पटना वुमेन्स कॉलेज की, उसकी शादी तय हो जाती थी बिना देखे,
1: मतलब इतनी काबिल,
0: इतनी काबिलियत थी उस कॉलेज के नाम पे। और वहां से आई वॉज सेंट टू, यहाँ मुंबई में मूड इंडिगो फेस्ट होता है IIT का, तो जब हम वहां गए और वहां पे जब नाम कमा के आए तो यू नो
1: मूड इंडिगो में नाम कमाना आसान बात नहीं है,
0: नहीं है, नहीं।
1: क्योंकि मूड इंडिगो एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है, बॉम्बे IIT का एक बड़ा आयोजन जिसमें बहुत कॉरपोरेट कंपनियां शामिल होती हैं और बड़े बड़े कलाकारों की जब शामें होती हैं,
0: राइट,
1: तो नशा होता है संगीत का वहां।
0: करेक्ट। तो उसी समय मेरे लाइफ में एक्टिंग भी एक्सप्लोर हो गया था, सो हमने एक वन एक्ट प्ले किया, उसमें आई वॉज प्लेइंग द लीड एक्टर। और वन एक्ट प्ले आपको पता होगा कि वो बहुत, मतलब एक ही सुर में चलने वाला, टायरसम और टायरलेसली चलने वाला प्ले होता है, और उसको अनुपम खेर जी जज कर रहे थे, तो वी गॉट द फर्स्ट प्राइज इन दैट कैटेगरी। सोलो सिंगिंग में आई रीच्ड द फाइनल्स, और तब जो आज मेरे दोस्त हैं, तब वो वहां के जजेस थे, राहुल वैद्या और प्राजक्ता शुक्रे, वो लोग जजेस थे उस शो के। आज मेरी उनसे पहचान है क्योंकि हम खुद उस शो से निकले। तो इट वॉज आई थिंक मुंबई आना कॉलेज की तरफ से, जितना भी हम सीख रहे थे अपने घर पे म्यूजिक, यहाँ आके थोड़ा सा एक होता है ना स्टैंप लग गया कि हाँ ठीक है तुम सही जा रही हो, ये समझ आया।
1: आने से पहले मन में पूरा विश्वास था या थोड़ा सा भय था?
0: नहीं, मूड इंडिगो के लिए तो पूर्ण विश्वास था कि जीत के आएंगे, पता नहीं क्यों था। और पता नहीं हमको बचपन से, हमेशा से, हम कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे, या अच्छा। तो जीतेंगे

0: या नहीं जीतेंगे। हारेंगे शब्द कभी आता भी नहीं था, या तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो जब जब खबर आई कि आपका ये रियलिटी शो का ऑडिशन होने वाला है, तो पता नहीं क्यों हमको लगता था कि हम फाइनल्स तक पहुंचेंगे।
1: क्या प्यारी बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ एक गाने की जगह बनती है, क्योंकि हाँ। इस बातचीत में हमको नियमित रूप से बीच बीच में गानों के अंतराल लेने हैं, तो यहाँ कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए, आपको पुराने गाने तो आपको पसंद हैं ये?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो दीपाली की पसंद के गाने बजाए जाएंगे।
0: ओके, तो चलिए हम वो सुना देते हैं जो जिसको गाने की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था उस ऑडिशन में।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: दीपाली, बातें ये हो रही थी कि एक तरफ संगीत चल रहा है, दूसरी तरफ बाइक भी चल रही है और पढ़ाई भी चल रही है, ये सारी चीजें चल रही थी। और इसमें कभी ये हुआ कि रेडियो के लिए गाने की कोशिश की गई?
1: नहीं, ये एक कमाल की बात है कि रेडियो के लिए गाना, जैसे हम सुनते थे कि दादी नानी के जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी कि ये आर्टिस्ट रेडियो, इन्होंने रेडियो के लिए गाया है। बट मेरा जमाना आते आते ये जो नया कल्चर आया था, एक एक किताब आती थी कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, जो आई थिंक
0: सीएसआर
1: हर बच्चे ने पढ़ी होगी, यूपीएससी की तैयारी वाला हर बच्चा उसको पढ़ता। पर मेरा जमाना जब आया, जब हम 7th-8th में आए, तो एक उसके साथ एक सप्लीमेंट किताब आती थी जिसमें वोकेशनल कोर्सेज, नया शब्द हम सुने थे, उसके अंदर एक कॉलम था, एक पेज था जिसपे लिखा था आरजे। वो बहुत आकर्षित करता था हमको, रेडियो जॉकी, क्योंकि जैसा हम बताए आपको ना, बचपन से रेडियो सुने हैं, तो मेरा जीवन का पहला 10 साल जो है वो रेडियो सुनने के लिए, एक बच्चे को रेडियो में फंसाने के लिए वो आरजे ही है जो उसको फंसा सकता है। क्योंकि संगीत तो वो यहां नहीं सुन रहा है तो वहां सुन रहा है, वहां नहीं सुन, कहीं से तो आ ही रहा है, बट उसका ध्यान खींचने के लिए कि अब आप सुनेंगे त्रिवेणी, ये बात एक बच्चे को फंसाने के लिए वो आवाज बड़ी आकर्षित करती थी। और आपकी, आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप जब बोल रहे हैं तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि आप रुकें।
0: अच्छा,
1: खूबसूरत आवाज है आपकी,
0: शुक्रिया।
1: तो हमको हमेशा ऐसा लगता था कि आरजे हम बन सकते हैं। और जब हम इंडियन आइडल में गए और हमसे पूछा गया कि आप जीवन में यू नो आप क्या बनना चाहती है, आई सेड आरजे, सो दे मेड मी एन आरजे फॉर एन एपिसोड, और आई वाज टॉकिंग टू पीपल लाइक अ रेडियो जॉकी। रेडियो पे उसमें आरजे के क्वालिफिकेशंस में लिखा था दैट इफ यू हैव अ म्यूजिकल सेंसिबिलिटी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो हम हमेशा सोचते थे कि गाना तो आता ही है, म्यूजिक समझ आता ही है, और आरजे भी बन जाएंगे, जीवन सेट है मेरा उसके बाद।
0: क्या बात है। बहुत ही सही है, बहुत ही सही है। पटना में कितना नाम कमा लिया था स्कूल कॉलेज के जमाने में?
1: पटना में आई वॉज रिलेटिवली फेमस, मतलब ये था कि एक स्टेज ऐसा आया था कि किसी भी कंपटीशन में जहाँ पे हम एंट्री ले चुके हैं वहां पे बात हो जाती थी कि गया, ये जीत जाएगी। और एंड इट हैपेंड काफी लेटर स्टेज में ये होने लगा, मतलब ऐसा 3-4 साल ही ऐसा रहा होगा, ऐसा नाम बना होगा, क्योंकि तब तक फिर आई वॉज टू यंग और यहाँ ऑडिशन हो गया तो हम आई शिफ्टेड टू मुंबई।
0: ये इंडियन आइडल वाला मामला किस तरह से आया था?
1: ये इंडियन आइडल पहला सीजन जो आया था जिसमें अभिजीत सावंत जीते थे, वो तो आई थिंक हर बच्चा उस सीजन को जानता है, तो वो देखने के बाद हमको लगा कि ये तो हम भी कर सकते हैं, कि क्या है, स्टेज पे जाना है, गाना गा देना है, तो ये तो हम भी कर सकते हैं क्योंकि हम तो यहाँ प्राइज भी जीतते हैं। बट उस साल मेरे 10th के बोर्ड्स थे, तो पापा मम्मी ने बोला बेटा 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट, मत करो। ठीक है, चलो माफ किया, छोड़ दिया हमने। इंडियन आइडल 2 आया तो फिर बोले बेटा 11th का एग्जाम है, मत करो। तो हम बोले तुम लोग तो ऐसे हमको पूरा जीवन बेवकूफ बनाते रहोगे। इंडियन आइडल 3 में 12th के एग्जाम्स थे। हम बोले या तो तुम हमको लेके जा रहे हो ऑडिशन पे या हम घर छोड़ के भाग रहे हैं।
0: मेरे माँ बाप को 12th
1: के एग्जाम के दौरान,
0: वेरी गुड।
1: सो हमको याद है हम ऑडिशन देने के, ट्रेन पकड़ने के पहले हम अपने कॉलेज से एग्जाम देके निकले थे, 12th का एग्जाम मार्च, और ट्रेन से उतर के स्टेशन से वापस हम भाग के गए थे। मेरे कॉलेज का बहुत सपोर्ट रहा कि यू नो मेरा कुछ भी गड़बड़ नहीं हो, भाग्य से उस डेट को एग्जाम भी नहीं था, जस्ट क्योंकि गैप होते हैं ना,
0: बीच में गैप्स होते हैं,
1: उसी गैप में ऑडिशन का डेट भी पड़ा था। आई वॉज लकी, वेरी वेरी लकी, और मेरे माँ बाप को भी समझ आ गया था कि इसके अंदर अभी अग्नि प्रज्वलित हो गई है, इसको रोकना सही होगा नहीं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और मेरा ऑडिशन उधर हुआ, इधर 12th के एग्जाम्स आए, हम यहाँ भी टॉप कर गए और वहां भी यू नो जब आइडल में थे तब रिजल्ट्स आए थे, और वहां पे आई वाज हर दिन आई वाज क्रॉसिंग एंड फाइनल्स तक पहुंचने का वो टाइम चल रहा था मेरा।
0: कितना मुश्किल था इंडियन आइडल का ये पूरा सफर, जहां आप ऑडिशन देने घुसी पहले दिन, वहां के एक्सपीरियंस से लेके फिर थोड़ा आगे बढ़ने तक का मामला बताइए।
1: मेरे लिए ऑनेस्टली इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट एज फार एज माई सिंगिंग वॉज कंसर्न्ड, क्योंकि हमको बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम अच्छा गाते हैं, और हम बहुत मेहनत भी करते थे, बहुत मेहनत करते थे, तो हमको उसमें डाउट नहीं था। बट द ओनली प्रॉब्लम आई फेस्ड वॉज दैट पीपल, लोगों के दिमाग में बिहारी का एक बहुत ही अजीब सा इमेज बना हुआ था। तो जब हम आए यहाँ पर मुंबई, जब 150 लोग 200 लोग पूरे हिंदुस्तान से एक छत के नीचे जमा हुए, जब हम लोगों को सुने तो पता चला कि हम कुएं के मेढक थे। कितने खूबसूरत सिंगर्स हैं इस धरती पे जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे मेरा सामना नहीं होता है। और उसके अलावा लोगों का एक्सपोजर इतना बड़ा था। हम कभी टीवी पे हमने पिज्जा और बर्गर के फोटोज और वीडियोस देखे थे, बिहार में नहीं था मैकडॉनल्ड्स का बर्गर या किसी भी पिज्जा, हमने नहीं देखा था। तो मेरा एक्सपोजर उस लेवल का नहीं था, बट यहाँ पे लोग काफी आगे बढ़े हुए थे, उनको बहुत कुछ पता था। तो मेरे लिए एज अ पर्सन वो ज्यादा बड़ा स्ट्रगल था, ऑल्दो अंग्रेजी में बात करना हो या कॉन्फिडेंटली

0: ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनमें तीन बच्चे हैं और तीनों बेटी हैं और फिर रुक गए हैं. ऐसे बहुत सारे परिवार हैं कि दो बेटी है और एक बेटा भी है जो शायद 10 साल बाद आया हो. ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है, ये उनका प्रोग्रेसिव सोच है कि वो दो बेटियों पर रुक गए. मेरे माँ बाप के अंदर जो चीज नहीं थी, पर ऐसा तो नहीं है कि वो उस समाज में नहीं रह रहे थे जहां ये चीज नहीं थी, वो तो थी. तो हम बचपन में अक्सर सुना करते थे कि बेटियों को बेटा बनाने की कोशिश मत करो. मेरे माँ बाप को लोग समझाते थे कि ये नहीं, यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट. इनके दहेज जमा करो, इनको इतना महंगी महंगी पढ़ाई मत करवाओ. देखो कि दहेज में, मेरे पास तो एक बेटी है, हम तो अपना जेवर दे देंगे उसको. तुम्हारे पास तो दो दो है, कहां से लाओगी जेवर.
1: हे भगवान,
0: हम उस माहौल में पल बढ़ रहे थे. वहां पे मेरी माँ झंडा गाड़ के बोलती थी, नहीं बेटा, तुम लोग की पढ़ाई पे खर्चा करेंगे हम, तुम लोग काबिल बनो. दहेज नहीं हो सर, हम नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है इतने पैसे, तुम काबिल बनो, पढ़ के काबिल बनो. तो हमारे ऊपर ना थ्रू आउट कॉन्स्टेंट माँ का पापा का बहुत पुश था कि तुम लोग अच्छा करो. पर रह तो उसी समाज में रहे थे ना.
1: पता है दीपाली, मुझे जब आप ये सारी बातें बता रही हो तो मेरे दिमाग में एक गाना गूंज रहा है भिखारी ठाकुर का.
0: बताइए, बेटी बिचवा.
1: क्योंकि बिल्कुल ये तमाम बातें जो है उस दिशा में जा रही थी, वो गाना सुनना चाहते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.

0: बाबूजी।
1: कितना मार्मिक है। बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो भोजपुरी नहीं समझते
0: जी,
1: उनके लिए थोड़े से मैं इसका अर्थ भी बता दूं।
0: पहले वो जमाना ऐसा था जिस ये संभिखारी ठाकुर का लिखा हुआ है।
1: बिल्कुल, और बहुत ही प्रसिद्ध कवि,
0: बहुत प्रसिद्ध
1: जी।
0: वो उस समय वहाँ के समाज की कुरीतियों पर गाना लिखते थे, जिसमें से एक कुरीति ये उस समय चलती थी कि बाप पैसे की कमी की वजह से, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, दहेज का प्रेशर इतना होता था कि दहेज न देना पड़े क्योंकि नहीं है उसके पास पैसे, तो एक बूढ़ा आदमी से उसकी शादी करा दी जाती,
1: जो गंगा मैया में भी होता है,
0: जो गंगा मैया में भी होता है, उसमें कहानी भी यही है।
1: पीरी चढ़ाई वो फिल्म की हम बात कर रहे हैं,
0: उसमें भी यही कहानी है
1: जी।
0: तो ये दहेज का पैसा बचाने के लिए एक बूढ़ा आदमी तो जवान छोटी बच्ची चाहेगा ही अपने लिए, वो पैसे नहीं लेता था शादी करने के लिए।

0: और ये गाना उस बच्ची के मन का दर्द है कि एक हम तो माँ की नौकरानी की तरह रहते थे, हम सारा छिपली लोटा धो के रखते थे, घर साफ रखते थे, हमसे क्या गलती हो गई बाबूजी, क्यों मेरी शादी करा दी बूढ़े से।
1: कितना मार्मिक है।
0: तो ये हम कभी ये जीवन नहीं जिए, पर हमको उनके लिए बहुत खराब लगता है जिन लड़कियों ने ये जीवन देखा है। और आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो नहीं सोच भी नहीं सकती हैं कि फ्रीडम क्या होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: आई एम वेरी लकी।
1: बिल्कुल, भिखारी ठाकुर ने जिस जमाने में ये लिखा है तब से हम बहुत आगे आ गए, लेकिन अभी भी
0: अभी भी है
1: जी बिल्कुल।
0: और ये बहुत पेनफुल है। जब हम मुंबई में रात को 3 बजे गाड़ी चला के घर लौटते हैं शूट से, तो हम सोचते हैं कि कितने लोगों का, कितनी लड़कियों का ये
1: ख्वाब होता है
0: ख्वाब भी नहीं आता होगा उनको ये
1: जी।
0: कि एक ऐसा जीवन हो सकता है।
1: बहुत बड़ी बात बोली है।
0: उनको ख्वाब भी नहीं, आप ख्वाब भी वही देखते हैं ना जो आप दुनिया में इधर उधर नजर में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हैं। और हम उस समाज से निकल कर आ रहे हैं।
1: ये कितना ज्यादा मार्मिक, कितना ज्यादा मुश्किल था कि ऐसे पूरे दौर से निकल कर आई एक लड़की, इंडियन आइडल के मंच पर खड़ी, अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रही है कि मैं इन सब से जूझ के आगे निकलूंगी। अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए दीपाली क्या करती थी?
0: दीपाली बचपन से कभी भी नेगेटिव हुई ही नहीं है। ये हमको लगता है ये भी एक एक अच्छा क्वालिटी है जिसके साथ कोई पैदा होता है। तो हम ना बहुत किताबी थे, जैसे किताब में अगर लिखा है कि चीटिंग इज रॉन्ग, है ना, या फिर स्टीलिंग इज रॉन्ग, अगर किताब में वो लिखा है और माँ ने पढ़ के बता दिया चीटिंग इज रॉन्ग, आप विश्वास करिए मेरा, हम बचपन में कभी चीटिंग किए ही नहीं है। मेरा पूरा कभी कभी हमको अफसोस होता है कि वो बच्चा जो बच्चा बन के रहना चाहिए, हम इतने सीरियस थे जीवन को लेके, अपने लक्ष्य को लेके, कि हमको लगता था कि, और तब अब बड़े होके समझ आता है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है चीजें, ये जो बीच का ग्रे वाला शेड है ना,
1: वो भी
0: वो
1: एक
0: है
1: होता है।
0: जीवन। जीवन
1: हाँ
0: वो है,
1: बिल्कुल।
0: ब्लैक एंड व्हाइट तो जन्म और मृत्यु है, पर उसके बीच जो ग्रे का शेड है वो ही जीवन है, वो ही प्रेम है। ये बहुत बड़े होके समझ आता है। तो
1: बिल्कुल
0: दीपाली जो बचपन में जो बच्ची थी वो कभी नेगेटिव नहीं होती थी, क्योंकि किताब में लिखा था कि नेगेटिव होना गलत बात है। अब दीपाली बहुत खुशी से नेगेटिव होती है, बहुत जोर से दिल टूटता है, बहुत दम लगा के रोती है, 4 दिन सल्प भी करती है, और फिर
1: ओके
0: वहां से बाहर भी आती है। और हमको
1: बहुत
0: लगता
1: सही।
0: है वो होना बहुत जरूरी है, वो एहसास होना बहुत जरूरी है। आज अगर किसी को मेरा गाना पसंद आता है तो वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वो जो एहसास महसूस कर रहा है वो हम कर चुके हैं। अगर हम वो नहीं करते तो वो उस तक नहीं पहुंचा सकते हम।
1: बिल्कुल। मुझे उस दिन के बारे में बताइए जब आप इंडियन आइडल से एलिमिनेट हुई थी।
0: वो दिन बहुत कठिन था मेरे लिए, जब हम स्टेज पर अनाउंस हुआ कि दीपाली आज
1: लेकिन
0: एलिमिनेट हो रही
1: ताकत
0: है,
1: पूरी लगाई थी,
0: पूरी ताकत।
1: परफॉर्म बहुत बेहतरीन किया
0: और
1: था।
0: वो मतलब सोचिए हम कितने कमाल के एक्टर एक्टर हैं, आज भी हम सोचते हैं। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि हम बैठ के चीख चीख के रोएं, बट कैसे, किताबी बच्चा थे हम, रोना सबके सामने रोना कमजोरी की निशानी,
1: तो
0: पता नहीं
1: संभाल लिया।
0: कौन सी किताबों में पढ़ के रखा था ये सब हमने, पर ये हमने इस वजह से पब्लिकली हम कभी नहीं खुल पाते थे। आज मेरे लिए एक सुंदर बच्चे को खेलते देख के रोना बहुत आसान है, बट उस समय वो फेज जो था, वो जो दीपाली थी वो बहुत कड़क थी अपने
1: अपनी कमजोरी
0: डिसीजंस
1: दुनिया
0: में,
1: के सामने नहीं
0: कमजोरी
1: आने
0: दुनिया के
1: देना।
0: सामने नहीं आ सकती है चाहे कुछ भी हो जाए। तो
1: हाँ
0: ये वो जो दौर था, वो जो दिन था, वो बहुत कठिन था मेरे लिए,
1: अंदर
0: क्योंकि
1: बहुत तूफान चल रहा
0: अंदर तो
1: है लेकिन
0: तूफान,
1: ऊपर सब कुछ स्थिर है।
0: ऊपर ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है, लाइफ विल गो ऑन, पर असल में दिल के अंदर सब कुछ टूट गया था, लगा था अब यहां से कहां, अब क्या होगा लाइफ में।
1: और जब मिनी ने कहा कि आप बहुत नाम कमाएंगी
0: हाँ तो लगा था हाँ ठीक है, मन रखने के लिए तो कोई भी
1: आपको लगा नहीं था कि ये होगा
0: नहीं,
1: कि
0: बिल्कुल
1: एक
0: भी
1: दिन
0: नहीं,
1: दुनिया आपके गाने गुनगुनाएगी, ये कहा था मिनी ने।
0: ये कहा था उन्होंने, दीज वर एक्चुअली एग्जैक्टली यही शब्द थे उनके। और
1: हाँ
0: तब हमको लगा था ठीक है अब तो निकल रहे हैं तो क्या ही कोई बोलेगा, कोई थोड़ी बोलेगा कि अच्छा हुआ तुम एलिमिनेट हो गई। तो वो मेरा मन रख रही हैं। आए हम भी छोटे थे, 17-18 साल के थे, मिनी माथुर इज वेरी सेंसिटिव एज ए ह्यूमन बींग, तो वो कर रही है जो उनको करना है, पर जो वो कह रही है वो तो पॉसिबल नहीं है। बोले ना सपने में भी नहीं सोच सकते हैं आप जो मेरे साथ इस वक्त घटित हो रहा है, मेरे सपने में भी वो नहीं आ सकता था। तो उसके बाद लेकिन काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि

0: फिनेंशियली परिवार, मिडिल क्लास परिवार।
1: नहीं, मुझे पहले एक बात बताइए
0: जी,
1: वहां से लौटने के बाद
0: हाँ,
1: मन का बांध टूटा?
0: बहुत, स्टेज से उतरते ही जैसे ही 100% श्योर हो गए कि कैमरा कहीं भी नहीं है।
1: अच्छा, पहले ये तस्दीक
0: पहले
1: हो गई।
0: था, हाँ हाँ, क्योंकि वो रियलिटी शोज में हर जगह कैमरा लगे होते हैं, आपको कभी भी कोई भी कहीं भी धर सकता है अपने कैमरे से। तो जैसे ही हम आरके स्टूडियो में शूट कर रहे थे, और बड़ा सा एक आरके रूम है वहां पे, अब तो नहीं है,
1: अब नहीं
0: स्टूडियो
1: है।
0: नहीं है, पर तब बहुत बड़ा एक आरके रूम होता था, कॉटेज। तो हम वहां से निकले, वहां पे कैमराज होते थे, वहां से भागे दूसरे कमरे में गए, वहां पे प्रॉपर्टीज रखी होती है, आपने कभी देखा, एक कमरा है जो पूरी प्रॉपर्टीज है, जो राज कपूर साहब की फिल्मों में वो उनका जोकर वाला ड्रेस या वो नरगिस की बिकिनी, वो सब है उस प्रॉपर्टी रूम में। यहां हमको पता था कैमरा नहीं आएगा, घुसे कोने

0: आरके स्टूडियो में शूट कर रहे थे और बड़ा सा एक आरके रूम है वहां पे, अब तो नहीं है,
1: अब नहीं
0: स्टूडियो
1: है।
0: नहीं है, पर तब बहुत बड़ा एक आरके रूम होता था, कॉटेज। तो हम वहां से निकले, वहां पे कैमराज होते थे, वहां से भागे दूसरे कमरे में गए, वहां पे प्रॉपर्टीज रखी होती हैं, आपने कभी देखा हो, एक कमरा है जो पूरी प्रॉपर्टीज हैं, जो राज कपूर साहब की फिल्मों में वो उनका जोकर वाला ड्रेस या वो नरगिस की बिकिनी वो सब है उस प्रॉपर्टी रूम में। यहां हमको पता था कैमरा नहीं आएगा, घुसे कोने में गए और 15 मिनट तक इतना रोए हम कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है, धरा ही क्या है, ये स्थिति थी।
1: और कौन था जो संभाल रहा था?
0: नहीं, उस वक्त हम तो कोई भी नहीं था जो आई वुड नॉट लेट एनीवन, कोई मेरे पास भी नहीं आ सकता था अगर हम दुखी हैं तो, या क्योंकि कोई जान ही नहीं सकता है कि हम दुखी हैं, किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि
1: मतलब
0: हम दुखी
1: एक अकेले कमरे में
0: रो के पूरा दुख निकाल के उस कमरे से बाहर निकले हंसते हुए कि अरे कोई बात नहीं यार, पार्ट ऑफ लाइफ है।
1: गजब।
0: पर अभी जब हम सोचते हैं 17-18 साल और माँ बाप नहीं है, माँ बाप के मतलब मेरे मेरे मेरे जीवन के बहुत बड़े आधार, और हमेशा हम वो बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाना चाहती थी कभी भी, क्योंकि स्कूल में हम बहुत ब्राइट थे, पढ़ने में अच्छे, चीटिंग नहीं करती है, गंदी बातें नहीं बोलती है, ना बोलती है ना बोल सकते हैं आप उसके आसपास, यू नो, लड़कों से तो दूर क्योंकि हम गर्ल्स स्कूल में थे, लड़कों से दूर, बॉयफ्रेंड वाली लड़कियां गंदी होती हैं, बहुत आइडियलिस्टिक बच्ची दीपाली सहाय। तो मेरे दोस्त नहीं थे बचपन में, तो हम स्कूल जाते थे और हम सारा काम करते थे, सारे एक्टिविटीज, स्कूल का रिप्रेजेंटेशन, बट मेरा कोई दोस्त नहीं था, कभी नहीं था, कभी भी नहीं था। तो मेरे जीवन का आधार मेरे माँ बाप ही थे, वही मेरे दोस्त थे। तो जब भी हम स्कूल जाते थे तो मेरे स्कूल में घुसने के बाद घड़ी देखते थे और सोचते थे 4 बजेगा तो जीवन शुरू होगा, क्योंकि तब पापा मम्मी मिलेंगे या माँ मिलेगी घर पे, वो बच्ची जो हर दिन निकालती थी इस भरोसे कि बस ये स्कूल अभी जाना पड़ रहा है, शाम को तो माँ मिलेगी, वो बच्ची उस मोमेंट पे जब बिल्कुल अकेले पड़ गई थी, मुंबई में माँ बाप नहीं थे जब हम एलिमिनेट हुए, और क्योंकि हम बोले ना, हम कभी किसी को दिखाते नहीं थे कि हम दुखी भी हो सकते हैं, सो वो जो 2 दिन था टू लिव इन मुंबई एलिमिनेटेड और अपने को कंटेस्टेंट्स को हौसला देना कि यार बधाई देना कि आप चलो आप आगे बढ़ो, हम तो निकल गए, अब हम तो घर जा रहे हैं, इट वॉज द मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट 2 डेज ऑफ माई लाइफ, मोस्ट डिफिकल्ट।
1: और उसके बाद वापस लौटना और अपने माँ बाप को बताना,
0: उनके गोद में महीनों रोना, क्योंकि जब आपको एक्सपोजर नहीं है तो आपको ज्ञान भी नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि ये रास्ता तो हमने चुना नहीं था ना भैया कि हमको हम जाएंगे प्लेबैक सिंगर बनेंगे, हम तो कॉम्पिटिशन्स में प्राइज और ट्रॉफी लेके आते थे, इंडियन आइडल का ग्लैमर का वो क्वेश्चन हमें खींच के लेके चला गया, करनी तो पढ़ाई थी। अब लेकिन एक 18 साल की बच्ची रातों रात पूरे देश में फेमस हो गई, वो वहां से वापस आ जाए सब कुछ छोड़ के, वहां कोई उसको रख नहीं रहा है क्योंकि उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, यहाँ हर कोई इस उम्मीद में कि अब ये हमारी बच्ची जाएगी और कुछ बड़ा कर रहेगी, अब तो
1: बीच में तो एक भंवर है कि अब क्या करें,
0: अब जो बीच का ये जो समय है और वो भी एक कम उम्र की बच्ची, एक माँ बाप जो बहुत सादे हैं, बहुत ईमानदार, मतलब एक होता है ना स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, मेरे माँ बाप नहीं है वैसे, तो उनको भी नहीं पता है कि क्या करना है, तो वो जो 2-3 महीने जो बीते हैं निकलने के बाद, हर कोई क्लूलेस है, हर कोई आ रहा है आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है क्योंकि उसकी नजर में आप बहुत बड़े हो गए, पर उसके जाते ही आपको लग रहा है कि करना क्या है, यहाँ से आगे जाना कैसे है, मुंबई जाएंगे कैसे, वहां तो इतना महंगा है, वहां रहेंगे कैसे, करेंगे क्या, गाना, जावेद अख्तर तो हमारे शो के जज थे पर वो तो नहीं बोले कि बेटा हम तुमको गाना गवाएंगे, अब करेंगे क्या, 1 साल का ड्रॉप भी हो गया बिकॉज ऑफ इंडियन आइडल, 12th के बाद जो कॉलेज ज्वाइन करना था
1: वो नहीं किया,
0: वो नहीं हो सकता, तो एकदम मतलब नैया, जीवन की नैया जो मझधार में फंसी थी उस वक्त, कि
1: कैसे एक एक दिन बीत रहा होगा,
0: बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, मेरे से ज्यादा कठिन मेरे माँ बाप के लिए होगा आई एम श्योर, क्योंकि उनके लिए तो उनकी यही दोनों बच्चियां थी जो उनका वो पूरा जीवन हम ही लोगों को बनाने में लगा दिए है, अब हम दोनों 18-20 साल के हो चुके हैं।
1: आपकी बहन कितना बड़ा सपोर्ट थी?
0: ओ माई गॉड, हमको नहीं लगता है इफ इट वॉज नॉट, क्योंकि ना बचपन से हम आई वॉज द स्टार, एक वो बच्ची होती है ना जो आती है तो पार्टी में रौनक आ जाती है,
1: सब मुड़के देखते
0: हैं, सब मुड़के देखते हैं ये गाना गाती है, ये बहुत फेमस है, ये बहुत
1: कलाकार है
0: ये तो उस

0: वजह से क्या होता है, जो सिबलिंग होता है वो भी तो बच्चा है ना, वो भी छोटा है, उसका कोई भाव नहीं है क्योंकि उसके घर में एक स्टार पैदा हो गया,
1: वो पर्दे के पीछे है,
0: वो पर्दे के पीछे है, जो मेरे रोज के रियाज हैं, जो सबसे बोरिंग, जो मेरे जीवन का सबसे गंदा एस्पेक्ट है, जितनी हम लड़ाई करते हैं उसके साथ, जितना चिल्लम चिल्ली हो रहा है, झेल वो सब रही है, लेकिन जब बाहर निकल रहे हम दोनों तो स्टार हम हो जा रहे हैं,
1: और वो ओझल है,
0: वो ओझल है, वो कहीं भी नहीं है, बट ये सपोर्ट होता है, वो ओझल होके भी खुश थी, ये उसका बड़प्पन है, ये इतना ताकत नहीं है मेरे में।
1: हम समझ सकते हैं कितनी संवेदना के साथ, कितने प्यार के साथ आप अपनी इस बहन के योगदान को याद करें, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत प्यारी बात है
0: जी।
1: और दुनिया के सब लोग सुने कि कैसे एक कलाकार के बनने में
0: सबका
1: उसके भाई बहनों का कितना बड़ा योगदान होता
0: है, सबका सैक्रिफाइस होता है और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस उसके भाई बहन का होता है, खासकर जब आप एक ही उम्र के हैं,
1: हाँ,
0: 2-3 साल के अंतर पर
1: है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कलाकार नहीं है, क्योंकि वो तो भाई बहन हैं।
0: वो सबसे कठिन उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि जब हम बड़े हुए तो हमको रियलाइज हुआ, हम उसको, हमको लगता है आई थिंक आज से 10 साल पहले एक दिन हम उसको फोन करके और बहुत रोए, हम उसको बोले आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो फेमस, क्योंकि तुम तो थी ही नहीं कहीं भी, तुम तो कभी हमसे कुछ बोली भी नहीं। मतलब अभी अपने छोटे कजन्स को देखते हैं, भाई बहन आपस में लड़ाई करके किताब में लिख देते हैं, ये मर जाए, मेरा छोटा भाई मर जाए, मम्मा उसको ज्यादा प्यार करती है, इस तरह की कहानियां हम बहुत देख रहे हैं अपने आसपास, करते होंगे लोग। पर ये कैसी लड़की थी, ये इस मेरा सौभाग्य था या उसका दुर्भाग्य था कि वो मेरी बहन थी, हम नहीं समझ पाएंगे। उसके अंदर भी तो वही सारी फीलिंग्स चलती होंगी जो मेरे अंदर चलती हैं।
1: जब आप बहुत लोगों का आकर्षण हासिल कर रही हैं, फोकस हासिल कर रही हैं, उस वक्त वो कहाँ होती थी?
0: वही होती थी और स्माइल के साथ वही रहती थी, और हमको इतना दुख हो रहा है इस वक्त ये बोलने में कि हमको याद भी नहीं है कि वो कहाँ रहती थी, पड़ी भी नहीं थी हमको, हम अपनी अपने ताली बटोरने में इतने बिजी थे कि हमको फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो कहाँ है, हमको सिर्फ आगे दिखता था, हमको सिर्फ सीढ़ी दिखता था। मेरी माँ कहती है जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो कौन भारती हैं जिनकी, जिन्होंने अर्जुन के ऊपर कोई किताब लिखी है, मेरी माँ किताबें बहुत पढ़ती है, तो वो पढ़ रही थी अर्जुन का विश्लेषण, अर्जुन के कैरेक्टर के ऊपर किसी ने एक किताब लिखी थी, मेरी माँ पढ़ रही थी। अर्जुन एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत लुभाता है, मतलब अच्छा बुरा तो पर्सपेक्टिव है पर लुभाता बहुत है। मेरी माँ पढ़ती थी अर्जुन को जब हम उसके पेट में थे, तो जब हम आए एग्जिस्टेंस में तो मेरा ना रवैया भी कुछ वैसा ही था, हमको और कुछ नहीं दिखता था,
1: सिर्फ
0: अपना लक्ष्य दिखता था हमको आसपास। अर्जुन में तो इतनी भी संवेदना थी कि वो युद्ध के पहले गांडी उतार दिया था, मेरे में तो वो भी नहीं था।
1: तो वो अर्जुन को पढ़ रही थी,
0: तो
1: बहन की बात चल रही है,
0: तो मेरी बहन उस अर्जुन को देख रही थी और ये अर्जुन भूल गया था कि इसके आसपास, भूल गई थी कि इसकी बहन को किस चीज से गुजरना पड़ता होगा, हमको नहीं पता है कि वो कैसे उस बात को महसूस करती होगी। और जब हम उसको सॉरी बोले आज से 10 साल पहले, तो वो रोते रोते हंसते हंसते बोली पर तुम तो पैदा ही स्टार हुई थी ना, तुमको अगर सपोर्ट नहीं करते तो तुम वो तो बनती ही नहीं जो तुम हो, तुम तो पैदा ही हुई थी चमकने के लिए, तो तुम हमको थैंक यू मत बोलो। ये उसका बड़प्पन है सर, ये सब उसका बड़प्पन है, ये कोई छोटी बात नहीं है।
1: दीपाली, हम इतने जज्बाती मोड पर हैं कि आपने मुझे भी रुला दिया, यहाँ अपनी बहन के नाम पर एक गाना डेडिकेट कीजिए।
0: अगर आप बिना रोए गा दिए तो समझिए कि कमाल ही हो जाएगा आज, कोशिश करते हैं।

0: बात है, मुझे लगता है कि जितने लोग सुन रहे होंगे वो सब भी इस मोड़ पर बहुत जज्बाती हो गए होंगे, क्योंकि जीवन जो है ना वो केवल सफलताओं की कहानी नहीं है, जीवन इन जज्बात में छिपा हुआ होता है, जीवन हमारे इन आंसुओं में, हमारे हमारी इन फीलिंग्स में छिपा हुआ होता है। तो जिस तरह से आपने अपनी बहन को सलामी दी है वो बहुत अनमोल है, मुझे लगता है ये हमारी इस बातचीत का एक बहुत ही प्यारा सा मोड़ है।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। दोस्तों, ये दिलचस्प बातचीत जारी रहेगी, अगले हफ्ते भी जरूर सुनिएगा इस बातचीत का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अब नहीं रहेगी मच्छरों से परेशानी, क्योंकि एक मच्छर इंसान को सोने नहीं देता है। नई टेक्नोलॉजी की मच्छर जाली के लिए संपर्क करें 45 वर्ष से आपकी सेवा में उपस्थित आरके ब्लाइंड्स दांडिया बाजार 9825027525। सेहत आपकी, सुरक्षा हमारी, यह है आरके ब्लाइंड्स की जिम्मेदारी।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म वक्त से, आवाज आशा भोसले की थी। गीत के बोल साहिर लुधियानवी के और संगीत रवि का। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत बस कुछ ही पलों के बाद।

छाया गीत के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। अगाध स्नेह और अटूट प्रेम का रस खोलता है भाई बहन का रिश्ता। बचपन की अटखेलियाँ, लुका छिपी का खेल, जैसे बारिश और मिट्टी का साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर सौंधी खुशबू का एहसास पूरे घर को महकाता है और घोलता है खुशियों का अर्क जीवन में।

भाई के लिए बहन क्या है और बहन के लिए भाई का मोल कितना है, ये बातें शब्दों में नहीं भावनाओं में बयां की जाती है। भाई को दुनिया की हर सुंदर चीज में अपनी बहन की ही छवि नजर आती है। और बहन, भला दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो बहन को अपने भाई से ज्यादा अनमोल लगी हो। प्रेम का ये रूप अनूठा है।

दिन कैसा भी हो, बिछोह उसके साथ जुड़ा ही होता है। बचपन का ये साथ भी कहां जन भर साथ चलता है। आखिर एक न एक दिन अपने भाई की नोक झोंक में कही गई बातों को सच करती हुई वो बहन चली ही जाती है परदेश, अपने पिया का घर बसाने। और उसे रोज चिढ़ाता भाई भरी आंखों से देखता ही रह जाता है।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। बचपन की यादों में खोई बहना याद करती है घर की चार दीवारी, अपना आंगन, सखियों की चुहलबाजियां, और इन यादों में मुस्कुराती है तो भर भर आती हैं अखियां भी। कलेजा मुंह को आता है और याद आती है उस खेवैया की, जो ले जा सकता है बचपन की उन गलियों में कभी भी। पुकार लगती है बस उस नाम की।

बचपन की बातों को अपने दिल से लगाए, कभी हंसे तो कभी आंसू बहाए, भेजे संदेश पीहर कभी बादलों के साथ, कभी करे चंदा से अपने वीरे की बात। कौन समझ सकता है एक बहन के मन के हालात, पराए घर में जिसके दिल में बसते हैं अपने।

करती हैं तो भूला कहां भाई का भी दिल अपनी इस बहन को। घर में फैली हर ओर उसकी ठिठोली, हंसी खिलखिलाहट की मध्यम होती आवाजें। वो दो चोटी में झूमती नाचती चिढ़ती चिढ़ाती वो, घर की चौखट में पैर धरते ही अब बहाती है आंसू। भाई छेड़ता है और एक बार फिर मुस्कुरा उठती है बहन। यही तो है अरमान उसका, खिली रहे खुशियों की चमक सदा चेहरे पर।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मैं वापस आऊंगा से, आवाज दीपाली सहाय की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म ताल से। आवाजें थी अनुराधा श्रीराम, सुजाता, सोनू निगम और एआर रहमान की। गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत एआर रहमान का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मेट्रो इन दिनों से, आवाज विशाल मिश्रा की थी। गीत के बोल अनुराग शर्मा के और संगीत प्रीतम का।

ラウ

0: श्रोताएं, गीत आपने सुना फिल्म अक्सर से, आवाजें हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की थी। गीत के बोल समीर के और संगीत हिमेश रेशमिया का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की चार दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और एससीओ के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए काम करने को लेकर उत्सुक हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
1: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपेरिजन में दो गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का यह परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया। 26 अगस्त से भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। नेपाल के अनुरोध पर चिकित्सा कर्मियों और सुरंग बचाव विशेषज्ञों सहित 11 सदस्य भारतीय दल भी स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नेपाल में संकट की स्थिति को देखते हुए भारत चिंतित है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेपाल की सभी जरूरतों में भारत मदद उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। भारत पड़ोसी देश को लगातार सहायता भेज रहा है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार, पश्चिम बंगाल में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की

0: श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म मीनाक्षी से, आवाज सुखविंदर सिंह की, गीत के बोल सुखविंदर सिंह के और संगीत एआर रहमान का।
1: पूजा प्लस। पूजा मॉन्सून सेलमा आ वर्षे फायदानो वरसाद, मेन्स गार्मेंट पर 50% सुधी डिस्काउंट। पूजा प्लस, रावपुरा, वडोदरा।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म बॉम्बे से, आवाजें चित्रा की थी, गीत के बोल महबूब के और संगीत एआर रहमान का।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओ, ये गीत आपने सुना फिल्म एक विलन रिटर्न से, आवाज अंकित तिवारी की थी। गीत के बोल मनोज मंतशिर के और संगीत अंकित तिवारी का ही।
1: ये है विविध भारती।
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून, किया है वहां से पहली।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर, ओ सड़क।
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
6: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन 6:35 पर। शाम 6:45 पर आपको सुनवाएंगे संगीत सरिता श्रृंखला विविध भारती के खजाने से पंडित दिनकर केंकड़ी से बातचीत, प्रस्तुति छाया गांगुली की। विशेष जयमाला आप सुनेंगे शाम 7:00। इसमें आप सुनेंगे क्रिकेटर करसन खावरी को, प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। कार्यक्रम जिज्ञासा आपको सुनवाएंगे शाम 7:45 पर। रात 8:00 आप सुनेंगे हवा महल, इसमें आप सुनेंगे सुनो कहानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला का दूसरा भाग, वाचन अमरकांत दुबे का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। रात 8:15 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम चित्रलोक। रात 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए, आज के फनकार कार्यक्रम सुनवाएंगे रात 9:30 पर। इसमें आप सुनेंगे अभिनेत्री लीना चंदावरकर को, प्रस्तुति कल्पना शेट्टी की। रात 10:00 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम छाया गीत आलेख एवं स्वर जी शाम का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:30 पर। मैटिनी शो आपको सुनवाएंगे रात 11:00। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब जानते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदन बार। 6:35 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम श्री रामचरितमानस का 296वां भाग। संगीत सरिता कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 6:45 पर। इसमें आप सुनेंगे श्रृंखला विविध भारती के खजाने से कलाकार तबला वादक पंडित निखिल घोष से बातचीत, प्रस्तुति छाया गांगुली की। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:00। सुबह 7:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के, त्रिवेणी कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:15 पर। आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, गीतकार होंगे शैलेंद्र, आलेख एवं स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। पिटारा सुनेंगे आप सुबह 10:00। इसमें आप सुनेंगे बॉम्बे टॉकीज, जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की।

कल सुबह 11 बजे आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:05 पर। सुरीला सफर कार्यक्रम होगा दोपहर 1 बजे। त्रिवेणी आपको सुनवाएंगे दोपहर 2 बजे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनवाएंगे दोपहर 3 बजे। संवादक होंगे ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। दोपहर 3:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नाट्य तरंग आई लव यू का दूसरा भाग, मूल गुजराती लेखक प्रदीप सोलंकी, हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानड़े। शाम 4 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम पिटारा उजाले उनकी यादों के, नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्र से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग, संपादन सहयोग मनीषा सिंह का, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। कार्यक्रम छाया गीत आपको सुनवाएंगे शाम 5 बजे। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:30 पर।

झरोखा आप सुनेंगे शाम 6:30 पर, संध्या रंजन कार्यक्रम सुनवाएंगे 6:35 पर, शाम 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरता श्रृंखला विविध भारती के खजाने से, कलाकार तबला वादक पंडित निखिल घोष से बातचीत, प्रस्तुति छाया गांगुली की। विशेष जयमाला आपको सुनवाएंगे शाम 7:00, सैनिकों की शौर्य गाथा महावीर चक्र काशीराम सिपाही को आप सुनेंगे। शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इंद्रधनुष साज और आवाज, माउथारगन पर होंगे मिलन गुप्ता।

हवा महल कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8 बजे। इसमें आप सुनेंगे हर्ष नाटिका उलाहना, लेखक इंद्रचंद तिवारी, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8:15 पर। कार्यक्रम आपके लिए आप सुनेंगे रात 9 बजे। आज के फनकार कार्यक्रम सुनवाएंगे रात 9:30 पर। इसमें आप सुनेंगे गीतकार शैलेंद्र को, आलेख एवं स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। कार्यक्रम ढलती जाए रात आप सुन सकेंगे रात 10:30 पर। विविधा कार्यक्रम सुनवाएंगे रात 11 बजे। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या रंजन।

0: ये गीत आपने सुना फिल्म बंधन से, आवाज लता मंगेशकर की।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: Salida.
1: मित्रों नमस्कार, विविध भारती के खजाने से आज हम चुन लाए हैं सुविख्यात गायक दिनकर गायकिनी से वाई एम म्हात्रे की भेंट वार्ता। ये भेंट वार्ता वर्ष 1986 में संगीत सरिता कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड की गई थी। प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार पंडित जी।
3: जी नमस्कार।
2: आप हमारे देश के एक उच्च कोटि के कलाकार हैं और हमारे शास्त्रीय संगीत के सभी श्रोताओं से बहुत ही परिचित हैं, फिर भी आज प्रथम बार सुनने वाले हमारे कुछ श्रोताओं के लिए हम आपका परिचय कराने हेतु यह जानना चाहेंगे कि आपने कब और कैसे संगीत सीखना शुरू किया और किन गुरुजनों से आपने तालीम पाई है।
3: मैंने संगीत 7 साल की अवस्था
2: जी हाँ
3: में शुरू किया। 1927 का मेरा जन्म ईयर है और 2 अक्टूबर
2: वाह
3: जिसको आप भूल नहीं सकते
2: हैं, गांधी जयंती की
3: जी। और सबसे पहले
2: जी
3: कैरकट्टे नागेश राव
2: अच्छा
3: बम्बई में ही थे, उनसे मैंने प्रारंभ किया। 2 साल सीखे
2: जी।
3: उसके उपरांत पंडित ओंकार नाथ ठाकुर
2: अच्छा बहुत अच्छे,
3: इनसे भी मैंने करीब 1.5 साल
2: जी
3: सीखा
2: जी।
3: उसके बाद मेरे गुरु बंधु श्री चिदानंद नगरकर
2: अच्छा
3: जो कि यहाँ भारतीय विद्या भवन के प्रिंसिपल थे, उनका मैंने सबसे पहले जब गाना सुना
2: जी
3: तो मैं प्रभावित हुआ
2: अच्छा।
3: और फिर मैंने ये जिद पकड़ी कि मैं जिनसे उन्होंने तालीम पाई उन्हीं से मैं सीखूंगा। और उन्होंने सीखा था स्वर्गीय पंडित एस एन रातनजनकर
2: जी हाँ,
3: और वो लखनऊ में थे प्रिंसिपल, तो मुझे लखनऊ जाना पड़ा
2: जी हाँ।
3: और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे माता पिता ने भी आज्ञा दे दी।
2: क्या बात है।
3: और 11 साल की उम्र में मैं लखनऊ गया और वहाँ मैंने फिर विद्या हासिल की
2: जी हाँ। तो इसका मतलब ये है कि आपको बचपन से ही संगीत का शौक रहा है
3: जी।
2: और जैसे आपने रातनजनकर जी से भी तालीम पाई है, रातनजनकर को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की तालीम
3: जी।
2: थी और उस्ताद फयाज खां की तालीम थी, तो आपके गुरु परंपरा से यह हमें ज्ञात होता है कि आपको आगरा ग्वालियर और जयपुर तीनों घराने की तालीम आपको सीना बसीना प्राप्त हुई है
3: जी।
2: बड़े भाग्यशाली हैं आप।
3: खैर ये तो ही है, लेकिन वो जमाना अलग था जबकि बहुत कम सुनने के लिए मिलता था गाना उस्तादों का। लेकिन आजकल का जमाना यह है कि रेडियो के जरिए, टेलीविजन के जरिए या म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसके जरिए काफी सुनने के लिए मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि आजकल की जो हमारे नौजवान
2: जी हाँ
3: उनके लिए यह बहुत आसानी हो गई है। इसी तरह से मैं जब सीखता था
2: जी
3: तो मैं काफी लोगों को सुना करता था
2: जी हाँ, जी
3: उस्तादों को, तो उसमें उस्ताद स्वर्गीय उस्ताद फयाज खान साहब उनका गाना मुझे बहुत पसंद था, इसलिए उनकी छाप
2: आपके
3: कुछ मेरे गायकी में अधिक मिलती है
2: हाँ।
3: ऐसा लोग कहते हैं
2: नहीं वो सही बात
3: है। हालांकि मैंने उनसे डायरेक्ट तालीम पाई नहीं है, परंतु वो हमारे गुरु जी के रतनजनकर जी के गुरु थे
2: जी हाँ।
3: तो कुछ न कुछ बातें तो वहाँ से मिलती हैं आती हैं। और चूंकि मेरा लगाव रंगीला घराना
2: जी हाँ
3: से था
2: जी हाँ,
3: इसलिए मैंने वो चीजें कुछ हासिल करने की कोशिश की।
2: तो आपके गायकी से हमारे जो श्रोतागण जो आपको सुनते आ रहे हैं लगातार उनको ये ज्ञात होता है
3: जी।
2: तो पंडित जी पिछले आप 40-50 साल से संगीत की सेवा आप कर रहे हैं और आपने मनन चिंतन किया है, तो आपके दृष्टिकोण से हमारे राजदारी संगीत का भविष्य क्या है? मतलब हमारे युवा पीढ़ी के जो कलाकार हैं क्या वो परंपरा का आदर रखते हुए विद्या का प्रदर्शन करते हैं?
3: देखिए ये बहुत विकट सवाल आपने पूछा है।
2: मतलब मैं भविष्य पूछ रहा हूँ
3: जी।
2: भविष्य
3: की बात अलग है और अभी जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी काफी निर्भर होता है। हमारे जो युवक कलाकार हैं वो मैं समझता हूँ उनके उम्र में हम जब थे
2: जी,
3: हम यानी मैं और मेरे गुरु बंधु, उनसे ज्यादा मेरे ख्याल से इनका IQ

0: बहुत अधिक
1: लगा है। अच्छा,
0: और वो अगर सीखे तरीके से तो मेरे ख्याल से हम लोगों से भी अधिक आगे बढ़ सकते हैं। परंतु आजकल हुआ यह है कि उनको काफी सुनने के लिए मिलता है, अलग अलग घरानों की तालीम वो सुनते हैं।
1: जी हाँ।
0: और सीखते दूसरा घराना।
1: अच्छा अच्छा। तो
0: फिर ये व्यवसाय बनाने के नाते भी कुछ सीखना शुरू करते हैं। अच्छा। तो जब ये व्यवसाय का जब सवाल आता है, उठता है
1: जी,
0: तब उसमें व्यवसाय में हमारा लाइट म्यूजिक जिसको कहते हैं
1: जी,
0: या उपशास्त्रीय संगीत
1: हाँ,
0: या फिल्मी, वहीं पर आप उनका व्यवसाय जो है वो जुड़ा रहता है, जिससे कि वो आमदनी उनको अधिक मिलती है, तो उनका मन जो है वो बट जाता है और एक ही जगह वो कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाते।
1: जी हाँ।
0: इस वजह से वो विद्या हासिल करने के लिए जो एक लगन चाहिए
1: जी हाँ,
0: एक तत्परता चाहिए और एक मेडिटेटिव क्वालिटीज जो माइंड में होनी चाहिए वो बन नहीं पाती है।
1: अच्छा।
0: इस वजह से उनका गाना कुछ हद तक पनपता है और बाद में वो स्टेल हो जाता है, क्यों कि उसमें विद्या जो है उसका अभाव लगता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: और विद्या जब तक नहीं है तब तक अपना आर्ट जो है
1: जी, वो
0: कला
1: उसका,
0: वो
1: उसका
0: पनप नहीं पाती है,
1: उसका विकास नहीं होता।
0: विकास उत्थान वगैरह अगर करना है तो विद्या मतलब सीखना बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है और साथ साथ रियाज भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये तीनों चीजें। और आजकल दिन ऐसे हैं गुजर रहे हैं कि अगर वो कोई चाहे भी हमको प्रैक्टिस करें
1: जी,
0: तो उस तरह के साधन उनको उपलब्ध नहीं होते। ये सब कठिनाइयां हैं। इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद हमारा रागदारी संगीत कुछ दूसरा मोड ले। मेरा कहना यह है कि जब डेढ़ डेढ़ घंटा लोग एक एक राग को बरतते थे और सुनने वाले सुनते भी थे, अब दोनों में फर्क आ गया है। सुनने वाले डेढ़ घंटा सुनना एक राग को पसंद नहीं करते हैं, इसी तरह से गाने वाले जो है या बजाने वाले वो डेढ़ घंटा तक एक राग को बरतना उनमें वो हाँ उतना धैर्य
1: नहीं है।
0: हाँ, ये कहिए। तो मेरे ख्याल से इस दृष्टि से कुछ मोड़ ले लेगा
1: हाँ।
0: और हो सकता है कि अच्छे अच्छे राग जो है वो 45 मिनट से लेके 50 मिनट तक बड़े अच्छी तरह से निभ सकते हैं और निभा लेंगे। और वैसा तो आजकल नौजवान गाते भी हैं, बजाते भी हैं।
1: और पंडित जी, पाश्चात्य श्रोताओं के मन में हमारे संगीत के प्रति किस प्रकार की भावना है?
0: 5 साल पहले मैं जब गया तो वहाँ हमारा वोकल म्यूजिक
1: जी हाँ,
0: गायन कला
1: जी हाँ,
0: वो उतनी रुचिदायक उनको लगती नहीं थी
1: जी हाँ।
0: फिर मैंने अब की बार जब मैं गया तब काफी 6-7 यूनिवर्सिटीज में
1: आपने निरूपणात्मक व्याख्यान दिए हैं।
0: फिर मैंने उनको ठीक ढंग से समझाया।
1: अच्छा।
0: इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड, कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड इन इंडियन म्यूजिक
1: जी हाँ,
0: यहाँ से लेकर मैंने प्रेजेंट डे राग संगीत तक
1: जी हाँ,
0: मैंने उनको मुख्तसर में सब चीजें बता दी। काफी 3-3 घंटे मेरा कॉन्सर्ट उन्होंने पसंद
1: सुना
0: किया
1: और सुना,
0: ये सुना और पसंद किया। इसका मतलब ये श्रेय मैं मुझको नहीं, मेरे ऊपर नहीं लेता हूँ, परंतु हमारे भारतीय संगीत की कला जो है
1: एक विशाल कला है। मगर आपने बहुत बड़ा कार्य किया है कि जो आपने उनको सही बातें समझा दी उनको
0: जी,
1: हमारे संगीत के बारे में जो सही जानकारी होनी चाहिए, जिस दृष्टि से उसे देखना चाहिए, उस बातें सब आपने बता दी। हमारे श्रोताओं के लिए आपने अपना मूल्यवान समय देकर जो आज यहाँ उपस्थित रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते।
2: सुविख्यात गायक दिनकर गायकिनी से YM म्हात्रे की ये भेंट वार्ता अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं दिनकर कैकिनी का गाया सावन।

विविध भारती के खजाने से। आज आप सुन रहे थे सुविख्यात गायक दिनकर कैकिनी से की गई भेंटवार्ता और तत्पश्चात उनका गाया सावन। इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। नमस्कार।

0: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विशेष जयमाला।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगर

0: फौजी साथियों नमस्कार। आमतौर पर इस कार्यक्रम को पेश करते हैं कुछ जाने माने फिल्म कलाकार, फिल्मी हस्तियां, पर कभी कभी फिल्मी दुनिया से इतर कुछ जाने माने लोग भी विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपसे मुखातिब होते रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं जाने माने भूतपूर्व क्रिकेटर करसन घावरी।
1: हेलो मेरे फौजी साथियों, आज मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आप लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला है, तो इस तरह के मौके तो बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। और मेरा नाम करसन घावरी है, मैं इंडिया का पुराना खिलाड़ी हूं जो 74 से लेके 82 तक इन्होंने टेस्ट मैच खेला, 39 टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया एंड आई केप्ट ऑन प्लेइंग इट टिल 87 इन फर्स्ट क्लास मैचेस इन द कंट्री। एंड आज आपके साथ बात करके इतना अच्छा लग रहा है। और आज मेरे कुछ चुनिंदे गाने हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आए। और सबसे पहला मेरा गाना है ए मेरे वतन के लोगों।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी का स्वरूप देव दर्शन धूप।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कॉर्न्स एवं हवन सामग्री।

0: आप सुन रही हैं विशेष जयमाला। आज के इस कार्यक्रम को पेश कर रही हैं एक जानी माने भूतपूर्व क्रिकेटर जिनका नाम है करसन घावरी।
1: मेरे फौजी भाइयों, क्रिकेट के अलावा आप लोगों को जान के शायद थोड़ा आश्चर्य भी होगा कि बचपन में मैं जब इन्हों 14-15 साल का था उस वक्त मेरी इतनी चाह थी कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो न सका and I was failed and I took up you know the cricket very seriously and ultimately you know I played for India. मुझे बहुत खुशी है कि कहीं ना कहीं कंट्री को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है, चाहे आप यू नो एज ए सैनिक करो, चाहे आप क्रिकेटर के मुताबिक करो या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन के दौर पे करो। तो आज मुझे इतनी खुशी है कि क्रिकेट के दौर में हमने अच्छा खेला, अच्छी टीम भी थी, बहुत बड़े खिलाड़ी थे, अच्छी अच्छी टीमों के साथ खेले और जिस तरह से आज जो टीम कर रही है और जब हम खेल रहे थे उसके अंदर और आज के क्रिकेट में बहुत फर्क है। इन लास्ट 20-25 इयर्स इंडियन टीम हैज नेवर लुक्ड बैक यू नो आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप इन 1983। मेरा दूसरा इन पसंदीदा गाना है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छा लगे। गाना है मनोज कुमार साहब की फिल्म का, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती।

मेरे फौजी भाइयों, आज इतने सालों के बाद आप लोगों से बात करने का जो मौका मिला, तो साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये जो कमिटमेंट होता है, चाहे आप क्रिकेट में हो या सेना में हो या बिजनेस में हो या कहीं भी, कमिटमेंट एक ऐसी चीज है कि मैंने तो बहुत बार देखा है, स्पेशली जवानों के लिए, कि वो जब सरहद पे होते हैं, जब उनके घरों में ब्याह होता है या कहीं नो किसी का बर्थडे होता है या कोई मर भी जाता है, तो भी वो लोग अपनी वो जगह छोड़ के जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उनका एक कमिटमेंट होता है। जिस तरह से आप लोगों के काम के अंदर जो डेडिकेशन होता है, जो डिसिप्लिन होती है, वो दूसरी जगहों में मिलना बहुत मुश्किल है। स्पोर्ट्स में शायद आपको सर्टेन एक्सटेंड आपको मिल सकती है, लेकिन जो हार्डवर्क, जो डिसिप्लिन और जो कमिटमेंट के साथ आप लोग जो काम करते हैं, वो जो हार्डशिप है उसके थ्रू जाना, वो सबसे बड़ा कठिन काम है। और आप जो करते हो, आपके वो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है, आप लोग को हम लोग सलाम करते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं होती है। और वो सब पार करके आपको कोई ना कोई, जो भी रैंक में होते हैं आप, वहां पर अपना बेखूबी ना अच्छे से अपना काम निभाते हैं, उसके लिए वी आर प्राउड टू बी इंडियन। और उसके बाद ये जो सोच के मैं आपको एक गाना सुना जा रहा हूं, वो है होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है।

0: हाँ तो मेरे फौजी साथियों, एक बात बताना बहुत जरूरी है आप लोगों को कि मैं गाने का शौकीन तो बचपन से हूँ. बिफोर यू नो इवन आई प्लेड यू नो क्रिकेट राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई यूज़ टू वॉच ऑलमोस्ट एवरी फिल्म इन माई नेटिव प्लेस इन राजकोट. सो गाने का शौक अभी भी है और वही शौक बिल्कुल इन बरकरार रहेगा आखिरी दम तक. और हमारे पास मतलब इन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लेखक है, इतने अच्छे अच्छे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, तो उन सबको भी सलाम क्योंकि वो एक बहुत बड़े इनो क्रिएटिव वर्कर्स होते हैं. और आज हम लोग इनो इतने अच्छे सुंदर इनो गाने सुनते हैं, जब सुनते हैं और अच्छा लगता है तो वो गाना आपके दिमाग में बैठ जाता है, आपके दिल में बैठ जाता है. एक दूसरा गाना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो गाने का नाम है गाता रहे मेरा दिल, जो देवानंद साहब की फिल्म गाइड फिल्म का गाना था ये. और ये गाना इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि जिंदगी में सब लोगों को खुश रहना चाहिए जितना हो सके. कठिनाइयां तो सबको आती है लेकिन उसका सामना करके उसके ऊपर जीत हासिल करके जब आप आगे निकलते हो तभी ऐसे लगता है कि अंदर एक अपने दिल में एक गाना मचल रहा है कि गाता रहे मेरा दिल.
1: गाता

फौजी साथियों, इंतजार की जो घड़ियां होती है कई बार बहुत लंबी भी होती है, कई बार बहुत छोटी भी होती है, लेकिन सैनिक और जवानों की जो घड़ियां होती है वो ज्यादा करके लंबी होती है, क्योंकि जब वॉर होने का समय होता है तो आप लोग को बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, बहुत सारा इंतजार करना पड़ता है। उसी तरह हम लोग एक टेस्ट सीरीज खेलने गए थे 77 में ऑस्ट्रेलिया में, तो 1947 के बाद 77 तक इंडिया जब भी ऑस्ट्रेलिया गई थी उस वक्त वो लोग हार के आए थे, तो वो घड़िया हमारे लिए इतने सालों की घड़िया थी कि 77 में वी वांट इंडिया टीम वांटेड टू डू वेल। और फॉर्चुनेटली वहां पर ऐसा हुआ मेलबर्न टेस्ट क्रिकेट में, पहला टेस्ट मैच वो लोग जीत चुके थे, सेकंड वाला ड्रॉ हो गया था, और थर्ड वाला जो मेलबर्न में हुआ वो हमको जीतना बहुत जरूरी था, तो जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को कुछ 120 रन करने थे आखिरी बारी में, और हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को 82 में ऑल आउट किया था और वो मैच जीत गए। जब पहली बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में हम लोगों ने जो सीरीज स्क्वेयर की वो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ये इंतजार का फल ऐसे होते हैं। मेरे जवान साथियों, शायद ये सेगमेंट और ये हमारा वक्त का आखिरी गाना हो सकता है, और ये गाना हम सबसे जुड़ा हुआ है, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। तो जिस तरह का काम हमारे जो सैनिक जवान लोग कर रहे हैं, और बहुत सारी लड़ाइयों में बहुत बहुत लोगों ने बहुत बड़ा नाम कमाया, आज भी हर एक 15 अगस्त को या 26 जनवरी को उनको याद किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर सुनील गावस्कर है या सचिन तेंदुलकर है, ये ऐसे खिलाड़ी है कि ये लोग अमर रहेंगे, 100 साल 200 साल के बाद भी लोग उसको याद करेंगे। जैसे आज भी सर डॉन ब्रैडमैन को 100 साल के बाद भी लोग याद करते हैं, तो हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही खिलाड़ी है जैसे गावस्कर साहब है, तेंदुलकर साहब है, उनको क्रिकेट की दुनिया से कोई भुला नहीं सकता।

0: साथियों, आज आप लोगों से बात करने का जो मौका मिला, मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ। और आने वाले समय में कभी ऐसा मौका मिला या मिलने का मौका मिला तो मैं बहुत खुश होगा। और आज आप सबको मेरी तरफ से, हिंदुस्तान अपनी कंट्री की तरफ से, सब आप सबको बहुत बहुत बधाई। स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।
1: आपने सुना जाने माने भूतपूर्व क्रिकेटर करसन घावरी का पेश किया ये विशेष जयमाला कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि क्रिकेट के सुनहरे दौर की यादें ताजा हो गई होंगी और करसन घावरी का ये कार्यक्रम आपको जरूर अच्छा लगा होगा। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे H.R. पाटले, संयोजन रेणु चतुर्वेदी, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

0: आप सुन रहे हैं
1: FM 93.9 MHz पर विविध भारतीनू वडोदरा केंद्र आप सांभळी रह्या छो। श्रोता मित्रों, हवे सांभळो अग्निपथ फिल्मनू गीत सोनू निगमना स्वरमा। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार अजय अतुल।

हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी। आज के हवा महल कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला सुनो कहानी के अंतर्गत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर है अमरकांत दुबे का और प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। तो आइए सुनते हैं

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला का दूसरा और अंतिम भाग।
1: एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ नई पुस्तक के प्रूफ देख रहा था। जाड़ा विदा होने से पूर्व आज 2-3 दिन से खूब जोरों से अपना प्रकोप दिखा रहा था। लगभग 8 बजे का समय होगा। सिर में मफलर लपेटे उषाचरण सवेरी की सैर करके घर की ओर लौट रहे थे। ठीक उसी समय राह में एक बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखूं तो अपने उस रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। उनके पीछे बहुत से तमाशाई बच्चों का झुंड चला आ रहा है। रहमत के ढीले ढाले कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से लथपथ छुरा। मैंने द्वार से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया और पूछा, अरे भाई क्या बात है? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत से सुना। हमारे एक पड़ोसी ने रहमत से रामपुरी चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उसकी ओर बाकी थे, जिसे देने से उसने साफ इनकार कर दिया। बस इसी बात पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकालकर घोंप दिया। रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अपशब्द सुना रहा था। इतने में काबुलवाला ओ काबुलवाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर में कौतुक हास्य से चमक उठा। मिनी ने आते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने प्रफुल्लित मन से कहा, हाँ वही तो जा रहा हूं। रहमत ताड़ गया कि उसका ये जवाब मिनी के चेहरे पर हंसी न ला सकेगा। तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ओए ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए। छुरा चलाने के जुर्म में रहमत को कई वर्ष का कारावास मिला। रहमत का ध्यान धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया और चंचल मिनी का आचरण तो और भी लज्जाप्रद था। ये बात उसके पिता को भी माननी पड़ेगी। उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भूलकर पहले तो नबी सईस के साथ मित्रता जोड़ी, फिर क्रमशः जैसे जैसे उसकी वयोवृद्धि होने लगी वैसे वैसे सखा के बदले एक के बाद एक उसकी सखियां जुटने लगी। और तो क्या, अब वो अपने बाबूजी के लिखने के कमरे में भी दिखाई नहीं देती। मेरा तो एक तरह से उसके साथ नाता ही टूट गया है। कितने ही वर्ष बीत गए। वर्षों बाद आज फिर एक शरद ऋतु आई है। मिनी की सगाई की बात पक्की हो गई। पूजा की छुट्टियों में उसका विवाह हो जाएगा। कैलाश वासिनी के साथ साथ अब की बार हमारे घर की आनंदमयी मिनी भी माँ बाप के घर में अंधेरा करके ससुराल चली जाएगी। सवेरे दिवाकर बड़ी सजधज के साथ निकले। वर्षों के बाद शरद ऋतु की ये नई धवल धूप सोने में सुहागे का काम दे रही है। हमारे घर पर दिवाकर के आगमन से पूर्व ही शहनाई बज रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यह मेरे हृदय की धड़कनों में से रो रो कर बज रही हो। मेरी मिनी का आज विवाह है। सवेरे से घर बवंडर बना हुआ है। हर समय आने जाने वालों का तांता बंधा हुआ है। आंगन में बांसों का मंडप बनाया जा रहा है। हर एक कमरे और बरामदे में झाड़ फानूस लटकाए जा रहे हैं और उनकी टक टक की आवाज मेरे कमरे में आ रही है। चलो रे, जल्दी करो रे, इधर आओ, अरे सुनो तो, अरे जल्दी करो रे। इन आवाजों की कोई गिनती ही नहीं है। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और अभिवादन करके एक किनारे पर खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान न सका। उसके पास न तो कोई झोली थी, न पहले जैसे लंबे लंबे बाल, न चेहरे पर पहले जैसी दिव्य ज्योति ही थी। अंत में उसकी मुस्कान देखकर पहचान सका

कि वो रहमत है। मैंने पूछा, अरे क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को ही जेल से छूटा हूं साहब। सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों में खट से बज उठे। किसी खूनी को मैंने कभी आंखों से नहीं देखा था। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ सा गया। मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के इस शुभ दिन में वो इंसान यहां से टल जाए तो अच्छा था। मैंने उससे कहा, अब देखो आज हमारे घर कुछ आवश्यक काम है, सो आज मैं उसमें लगा हुआ हूं, तुम आज जाओ, आ जाओ, फिर आना। मेरी बात सुनकर उसी क्षण जाने को तैयार हो गया, पर द्वार के पास आकर कुछ इधर उधर देखकर बोला, ओ क्या बच्ची को तनिक भी नहीं देख सकता? उसने सोचा हो कि मिनी अब भी पहले की तरह काबुलवाला, ओ काबुलवाला पुकारती हुई दौड़ी चली आए। उन दोनों के पहले हास परिहास में किसी प्रकार की रुकावट ना होगी। यहां तक कि पहले की मित्रता याद करके वो एक पेटी अंगूर और एक कागज के दोने में थोड़ी सी किशमिश और बादाम शायद अपने देश के किसी आदमी से मांग तांग कर लाया होगा। उसकी पहले की मैली कुचैली झोली आज उसके पास न थी। मैंने कहा, देखो आज घर में बहुत काम है, सो किसी से भेंट ना हो सकेगी। मेरा उत्तर सुनकर वो कुछ उदास सा हो गया। उसी मुद्रा में उसने एक बार मेरे मुख की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर अभिवादन करके दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे हृदय में जाने कैसी एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा तो वो स्वयं ही आ रहा है। वो आकर कहने लगा, ओ ये अंगूर और कुछ किशमिश और ये बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, आपका बहुत मेहरबानी बाबू साहेब, हमेशा याद रहेगी, पीछा रहने दीजिए। तनिक रुककर वो फिर बोला, बाबू साहेब आपका जैसी मेरा भी देश में एक बच्ची है, मैं उसकी याद कर करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा हाथ में लाया करता हूं, मैं ये सौदा बेचने नहीं आता। ये कहते हुए उसने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर छाती के पास से एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। फोटो नहीं, तैल चित्र भी नहीं, हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है। अपनी बेटी के इस स्मृति पत्र को छाती से लगाकर रहमत हर वर्ष कलकत्ता की गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता है और तब वो कालिख चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्श उसके बिछड़े हुए विशाल वक्ष स्थल में अमृत उड़ेलता रहता है। ये देखकर मेरी आंखें भर आईं और फिर मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल गया कि वो एक मामूली काबुली मेवे वाला है, मैं एक उच्च वंश का रईस हूं। तब मुझे ऐसा लगने लगा कि जो वो है वही मैं हूं, वो भी एक बाप है और मैं भी। उसकी पर्वतवासिनी छोटी बच्ची की निशानी मेरी ही मिनी की याद दिलाती है। मैंने तत्काल ही मिनी को बाहर बुलवाया, हालांकि इस पर अंदर घर में आपत्ति की गई, पर मैंने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। विवाह के वस्त्रों और अलंकारों में लिपटी हुई बेचारी मिनी मारे लज्जा के सिमटी हुई सिकुड़ी हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उस अवस्था में देखकर रहमत काबुल पहले तो सकपका गया, उससे पहले जैसी बातचीत करते न बना। बाद में हंसते हुए बोला, ओ लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी।

0: अतः उससे पहले की तरह उत्तर देते न बना। रहमत की बात सुनकर मारे लज्जा के उसके कपोल लाल सुर्ख हो उठे। उसने मुंह को फेर लिया। मुझे उस दिन की याद आ गई जबकि रहमत के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में एक पीड़ा की लहर दौड़ गई। मिनी के चले जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर रहमत फर्श पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में ये बात एकाएक साफ हो गई थी कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसे अब फिर से नई जान पहचान करनी पड़ेगी। संभवतः उसे पहले जैसी नहीं पाएगा वो। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा, कौन जाने। सवेरे के समय शरद की स्निग्ध सूर्य किरणों में शहनाई बजने लगी और रहमत कलकत्ता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफगानिस्तान के मेरू पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने एक नोट निकालकर उसके हाथ में दिया और कहा, रहमत तुम देश चले जाओ अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपए देने के बाद विवाह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के 2-1 अंग छांट कर काट देने पड़े। जैसी मन में थी वैसी रोशनी नहीं करा सका। अंग्रेजी बाजा नहीं बजवा पाया। घर में औरतें बड़ी बिगड़ने लगीं। सब कुछ हुआ। फिर भी मेरा विचार है कि आज एक अपूर्व ज्योत्सना से हमारा शुभ समारोह उज्ज्वल हो उठा।
1: हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत श्रृंखला सुनो कहानी अभी आप सुन रहे थे। इसके अंतर्गत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाया गया। वाचक स्वर अमरकांत दुबे, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ। सुनो कहानी।

श्रोता, यह गीत आपने सुना फिल्म ओ रोमियो से, आवाजें सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की थी। गीत की रचना गुलजार की और संगीत विशाल भारद्वाज का।

0: श्रोताएं, गीत आपने सुना फिल्म सितारे जमीन पर से, आवाजें अरिजीत सिंह और शिव बाबा पारुलकर की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए।

0: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

0: श्रोता गीत आप सुन रहे हैं फिल्म धड़क 2 से, आवाजें श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की है, गीत के बोल रश्मि विराग के और संगीत जावेद मोहसिन का। समय एक छोटे से अंतराल का, शेष कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: श्रोता मित्रों 93.9 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून करियो छे विविध भारती नु वडोदरा केंद्र। सवारे 8:30 लोकप्रिय हिंदी फिल्मी गीतों नो कार्यक्रम चित्रलोक, जेना प्रायोजक छे
2: अशोका द ग्रेट, एक्सक्लूसिव एथनिक एंड दुल्हा कलेक्शन, वडोदरा नो आधुनिक शोरूम, नवरंग सिनेमा रोड, रावपुरा, वडोदरा।
1: एम के फर्नीचर, 5 माड नो भव्य शोरूम, प्रतापनगर ब्रिज नीचे, वडोदरा।
3: पूजा प्लस,
4: पूजा मॉनसून सेल मा फायदा नो वरसाद,
5: मेन्स गार्मेंट पर 50% सुधी डिस्काउंट।
4: पूजा प्लस, रावपुरा, वडोदरा।
3: सवारे 10 फोन इन तथा अन्य लोकप्रिय कार्यक्रमों जेना प्रायोजक छे
2: आर्क ब्लाइंड्स, शिवाकृति बिल्डिंग, दांडिया बाजार, वडोदरा।
3: सेहत आपकी, सुरक्षा हमारी, अब नहीं रहेगी मच्छरों से परेशानी,
2: ये है आर्क ब्लाइंड्स की जिम्मेदारी।
6: हर रोज सुबह 7 सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसके प्रायोजक है वीको वज्रदंती। मजेदार नहीं, असरदार।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म परम सुंदरी से। आवाज सचिन जिगर और आदित्य तिरकारी की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत सचिन जिगर का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मेट्रो इन दिनों से, आवाज बाबुल सुप्रियो की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत प्रीतम का।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: थोड़ी देर में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दो दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई, 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
2: पूरा ताशकंद

0: शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
4: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास एआई, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर एट

0: AIR News हिंदी को फॉलो करें और हमारे WhatsApp चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
2: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
3: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपेरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बताया जो विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय शासन, सुदृढ़ संघवाद और लोकायुक्त की मजबूती के लिए खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े का कार्यालय विश्वास का प्रतीक था। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर दलित समुदाय को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस का दलित समुदाय को अपमानित करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने B.R. अम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
0: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
4: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है।

0: संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4,400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57 पदक जीते थे, वहीं 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, बिहार पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म पुष्पा 2 से, आवाज श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल रकीब आलम के और संगीत देवी श्री प्रसाद का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म जवान से, आवाजें अनिरुद्ध रविचंद्र, विशाल ददलानी और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल कुमार और शैलेंद्र के, संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र और शंकर जयकिशन

हर रोज शाम सुनिए सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत, जिसके प्रायोजक है विको वज्रदंती, मजेदार नहीं असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।

श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म डंकी से, आवाज अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल स्वानंद किरकिरे और आईपी सिंह के, संगीत प्रीतम का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म जुग जुग जियो से, आवाजें कनिष्क सेठ और कविता सेठ की थी। गीत के बोल पारंपरिक और संगीत कनिष्क सेठ और कविता सेठ का ही।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म वार से, आवाजें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल कुमार के और संगीत विशाल और शेखर का।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: गहरी चोट खाने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ?
1: मुझे गलत न समझना।
0: यही तो अफसोस है, मैं आपको बिल्कुल सही समझ गया हूँ।
1: मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। सच कहती हूँ, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल नादानी है।
0: कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा।
1: वाह, अच्छा शेर है। बैठो, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ।
0: ड्रेसिंग की क्या जरूरत है? दुनिया का हर जख्म कुछ दिनों बाद भर जाता है, और फिर अपनी जिंदगी तो कांटों में कटी है।
1: मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उस आदमी से सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें देहरादून तक ले जाए और तुम फिर कड़ी नजर रखे। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती
0: कि मैं टूट जाऊंगा।
2: लीना, ठीक अब भी मैंने कहा था, तू कहा थी अब तक?
1: घर पर ही थी और कहा थी।
0: नैनरा को मेकअप करने के लिए 2 घंटे चाहिए।
1: मैं मेकअप नहीं कर रही थी, गाड़ी का इंतजार कर रही थी। गाड़ी तुम लेकर आए, मैं कैसे आती?
0: अरे अंकल की गाड़ी ले आती।
1: उन्हीं की गाड़ी में आई है, मुझे अकल मत सिखाओ।
0: अकल तो उसे सिखाई जाती है जिसके पास अकल हो।
2: अरे अरे अरे, अरे क्या हो गया तुम लोगों को बाबा? आज मेरा बर्थडे, मुझे लड़ोगे?
1: देख, आज मेरी सबसे प्यारी सहेली लीना मेरी बर्थडे पार्टी की खुशी में एक गाना सुनाएगी।
0: हाँ हाँ हाँ,

0: आइए आज बात करें अभिनेत्री लीना चंदावरकर की।
1: क्या तुम सच कह रहे हो? अरे क्या, तुम तो बहुत छोटा ही है।
2: आपको तो ताज्जुब होगा कि

रीना चंदावरकर दरअसल कारवाड़ की रहने वाली हैं। 15 साल की उम्र में उन्हें अभिनय का चस्का लग गया और होनहार कलाकारों के चयन के लिए होने वाली एक प्रतियोगिता में उन्होंने चुपके से आवेदन कर दिया। उनके माता पिता ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दादाजी का समर्थन पाकर लीना चली आई मुंबई। उम्र बहुत कम होने के कारण इन दिनों उन्हें हीरोइन के रोल नहीं दिए जाते थे। कुछ फिल्मों में लीना चंदावरकर ने बहन की भूमिकाएं की। इस दौर में लीना ने छुटपुट मॉडलिंग भी की। उन दिनों अभिनेता और निर्देशक सुनील दत्त अपनी फिल्म मन का मीत की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म में उन्होंने लीना को पहली बार हीरोइन बनाया।

नरगिस जी के नजदीक रहकर लीना ने भाषा, संवाद अदायगी, नृत्य, तैराकी और ड्राइविंग सीखी। फिल्म मन का मीत को बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन लीना चंदावरकर की पहचान जरूर बन गई। अगले ही साल सन 1970 में लीना चंदावरकर की धमाकेदार फिल्म आई हम जोली।

0: जाने दो जाना है गाते गाते लीना धूम मचाती हुई चोटी की हीरोइनों में गिनी जाने लगी। शम्मी कपूर के साथ वे नजर आई फिल्म प्रीतम और फिल्म जाने अनजाने में।
1: राम, आज मैं बहुत खुश हूँ। दिल पे एक बोझा था, वो आज हट गया।
2: बोझ? कैसा बोझ?
1: आज जब तुम्हारा फोन आया था तो हेमंत भी वहाँ मौजूद था। उसने एकदम अचानक शादी की बात छेड़ी।
2: मुबारक हो।
1: ओहो, तुमसे बात करना भी मुश्किल है। मैंने हेमंत से साफ साफ कह दिया कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ।
2: माला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब तुम्हें मालूम होगा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ तो
1: अब कोई फायदा नहीं राम।

0: जब शक्ति सामंत जी आए घर पर और वो जाने अनजाने के लिए आए थे, तो उन्होंने दो फिल्मों के ऑफर लेके आए थे, एक में राजेश जी थे और एक में शम्मी जी। अब पता नहीं मेरे पापा को किसने भड़काया था कि शम्मी जी बहुत ही अपने टाइम में वो क्या बोलते हैं एकदम टाइप के थे, तो पापा ने बोला, पापा भी एकदम उनको मालूम नहीं ना, बोलने लगे कि राजेश खन्ना यस, शम्मी कपूर नो। तो उन्होंने वाई क्यों नो, तो बोलते वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, राजेश खन्ना नए नए हैं, तो नहीं आप बोलिए ना, ये शम्मी जी के साथ में बहुत अच्छा रोल है और इतना अच्छा मतलब सब्जेक्ट है। वो जमाना ऐसे था कि कोई आर्टिस्ट ही थे नहीं, इसलिए हम लोगों को वाकई बहुत इज्जत मिली और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस तरह से कि जैसे रवेल साहब मुझे तो अपने एक बेटी की तरह ट्रीट किया और एक मंदिर जैसा लगता था स्टूडियो में जाना का। अब हुआ ये कि शक्ति जी की फिल्म से पहले बप्पी सोनी एक डायरेक्टर थे जिन्होंने प्रीतम के लिए मुझे साइन किया, इन्होंने जाने अनजाने के लिए, तो इसका आउटडोर पहले आया, तो आउटडोर पहले हम लोग कश्मीर चले गए आउटडोर करने के लिए, दो तीन गाने फिल्म आए वगैरह, तो वहां पर शम्मी जी के साथ काफी उनकी फैमिली भी आई हुई थी वहां पर और मस्ती मजाक भी करते थे, वो मुझे बोलते थे डेढ़ फुटी, मैं बोलती थी लंबे इंसान का दिमाग घुटने में होता है, ऊंचा जो होता है, इस तरह से हम लोग, वो तो राजी नहीं बोला था कि वो डेढ़ फुटी बोले तो ऐसे बोलना कि घुटने में होता है आप लोगों का दिमाग, तो हम लोग काफी मतलब फैमिली काफी क्लोज आ गई और वो इतने अच्छे इंसान थे कि मैं
1: अभिनेत्री लीना चंदावरकर की धर्मेंद्र के साथ जोड़ी बनी फिल्म रखवाला में मेरे

सन 1971 में हास्य अभिनेता महमूद की फिल्म आई मैं सुंदर हूँ। इस फिल्म के जरिए लीना ने अपने चाहने वालों से कहा,

ये सन 1973 में आई फिल्म अनहोनी का गीत था। इसके बाद लीना की एक बड़ी शानदार फिल्म आई मनचली।

फिल्म मंचली में लीना चंदावरकर ने लोगों को अपनी अदाओं से खूब गुदगुदाया और ये साबित कर दिया कि कॉमेडी में भी उनका कोई जवाब नहीं है। सन 1974 में आई फिल्म विदाई, इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए लीना को खूब तारीफ मिली।

0: सन 1974 में विदाई फिल्म के साथ ही लीना चंदावरकर ने फिल्म उद्योग को अलविदा कह दिया था, क्योंकि सिद्धार्थ वांदोड़कर के साथ उनका विवाह हो गया था। एक दर्दनाक दुर्घटना में उनके पति नहीं रहे और लीना पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मजबूर होकर लीना चंदावरकर को दोबारा फिल्मी दुनिया में आना पड़ा।
1: तो जिंदगी है कभी खुशी है कभी।

0: खुशी है कभी गम।
1: आगे चलकर लीना चंदावरकर की मुलाकात हुई सुरों के बादशाह किशोर कुमार से, जो उनके जीवन साथी बने।
2: आज भी मैं जब कोई गाना सुनती हूँ उनका, तो एक एक गाने के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। जैसे एक गाना था, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।
3: देखा

0: शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम छाया गीत।
4: छाया गीत के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

तुम मेरे सामने हो खिलते फूलों की तरह, तुम्हारी मुस्कुराहटों से रोशन है ये जहां, तुम्हारे नैनों की चमक जैसे सितारे हैं, तुम्हारे होठों की हंसी जैसे बहारें हैं।

जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले, जैसे कभी

चांदनी रात तुम्हारे बिना अपनी चमक खो देती है। साथ बिताए लम्हे उन लम्हों की यादें दिल में मीठी खुशबू घोल देती है। तुम्हारी मुस्कान शहद की बूंद, मेरी नजरों में हो तुम समाए, इन नजरों के अलावा हर नजर से तुम्हें खुदा बचाए।

तुम्हारे चेहरे पे छाई जुल्फें दिल को छू गई, तबस्सुम ने जादू कर दिया, तुम्हारी हंसी की खनक एक धुन बन गई, ख्यालों में जो चेहरा था तुम्हारे दीदार से ख्याल एक गीत बन गया।

एक अजनबी दास्तां की तलाश है, एक नए अफसाने को दिल ढूंढ रहा है, दिल की राहों में एक नया सपना है, हर पल में छुपी एक कहानी है।

0: वो खरीदार नहीं हो सकता।
1: जिंदगी से मुलाकात एक पल की बात, दिल से दिल की बात जिंदगी भर का साथ। दिल की गहराइयों में एक नई रोशनी छाई है, तुमसे रात मुलाकात क्या हुई, जिंदगी मुस्कुराई है।

0: एक बात कहूँ, चेहरा रूप रंग हर अदा है रूखी रूखी, जब तक ना हो इसमें इश्क की चमक, रहेगी जिंदगी सूखी सूखी। गुस्ताखी माफ।
1: चेहरे पे गिरी जुल्फे कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माफ।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती जुलवा में बहुत मेमोरेबल।
2: बड़ी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
3: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
2: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीयों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच पर भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का

0: अगला आर्थिक विकास, एआई, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन की मध्य प्रदेश इकाई ने ऑपरेशन वज्र 2 के अंतर्गत एक बड़े अंतर्राज्यीय औषधि तस्करी मामले में 66 लाख से अधिक मनोरोगी गोलियां जब्त की हैं। ये खेप मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम 1985 की संबंधित धाराओं के तहत जब्त की गई है। इस अभियान में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और एक ट्रक भी जब्त हुआ है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सीबीएन ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश गलियारे के साथ मनोरोगी दवाओं की एक बड़ी अवैध खेप की आवाजाही के संबंध में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और उड़ीसा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan, this evening on a two-day visit aimed at further strengthening bilateral ties between India and Uzbekistan. He was warmly received by Uzbek President Shavkat Mirziyoyev at the airport. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that the entire Tashkent city has been decked up with Indian flags and colourful hoardings to welcome Prime Minister Modi on his fourth visit to the Central Asian country.
2: The Indian diaspora, comprising mostly of medical students in Tashkent, gathered for a special welcome for Prime Minister Modi. Tomorrow, Prime Minister Narendra Modi and President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, will reflect upon the entire spectrum of bilateral relationship that are based on civilizational ties and built over centuries and strengthened by strong people-to-people ties. The two leaders would review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. They will also share perspectives on advancing the shared development vision of Viksit Bharat 2047 and Uzbekistan 2030. Prime Minister Modi is also expected to visit the Shastri Memorial in Tashkent and the Mahatma Gandhi Center at the Tashkent State University of Oriental Studies. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Tashkent, Uzbekistan.
1: The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 669, while over 2,000 people remain missing. Search and rescue operations are underway across the affected districts of the Himalayan nation. Officials said the police are coordinating with residents and other agencies to locate missing people and assist those stranded by the floods. An 11-member technical team from India carried out on-site reconnaissance of hydropower tunnels in Nepal's flood-affected areas today to facilitate search and rescue of stranded individuals. The team comprising doctors, paramedics and tunnel engineers had arrived in Kathmandu yesterday. Today they reached Trishuli in Nuwakot district to assist in efforts to rescue workers trapped in a tunnel belonging to a hydropower project. In a social media post, the Indian Embassy in Kathmandu said today a specialized technical team from India carried out on-site reconnaissance of